ढोल तो समी राणी आउन जंगल बार बार दे विच आ के समी दी ढोल मैनू प्यास लगी जा कि तू पानी लिया ढोल जाए पानी लैन वास्ते समी राणी उसनू वाजा मार दे अल्लाह फजल करीम सराय आलमगीर आलिया की आखदी

0: गुड गुड वेरी गुड। अच्छा बोलो बे।
1: ए।
0: मी।
1: ए।
0: बोलो प्यार।
1: बाम्बू।
0: ओहो अच्छा बोलो लव।
1: गड़ाओ।
0: जान। बोलो बोलो जान।
1: आन।
0: अच्छा ये बोलो लव यू।
1: लव यू।
0: तेरी आंखें बोलती हैं।
1: बता बापे बोलती है बेटा।
0: तेरी

प्यारे शिव भक्तों, एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उसने संसार में मोह माया के बंधन में न जाने कितने पाप किए। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, लेकिन हे प्रभु, तुम तो सबको क्षमा करते हो, मुझे भी क्षमा करना प्रभु।

A big good morning to you, Sunrise Radio 103.2 FM. आप सुन रहे हैं right now. Welcome back after the hit of the hour. This beautiful song. मेरा नाम है अभी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. I hope इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी अभी उठे हैं then a very very good morning to you. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. So stay tuned with me. I'll be right back. And the next song is specially dedicated to you.

What a lovely song. क्या गाना था यार. इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM. And the next song is also dedicated specially to you.

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sonar Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ. Well, right now मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पर. After the news और तब भी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. तब तक enjoy कीजिएगा इन ब्यूटीफुल गानों को और enjoy कीजिएगा इस ब्यूटीफुल स्टार्ट संडे मॉर्निंग की. I'll see you on the other side. Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM, आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now, specially dedicated to you.

Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM, आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now, specially dedicated to you.

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है एबी एंड गेस व्हाट, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord.

Welcome back after the classic flashback, Million Sunrise Radio 103.2 FM. What a beautiful classic song here. Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तब भी beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. Stay tuned till 11 o'clock.

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर। सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। दिस इज एवी दिस साइड। 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और वंस अगेन अ बिग बिग बिग गुड मॉर्निंग टू यू। और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से, प्यारी तरह से जारी है। इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: I with our the greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio. Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

Welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मैं आशा करता हूँ कि इस गाने को आपने काफी पसंद किया होगा. मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं. I hope you know that. हमारा ऐप है ना, सो गूगल प्ले नहीं तो ऐप स्टोर पर आप जा सकते हैं एंड हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री. तो ज़रूर जाइएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा और दुनिया के किसी भी कोने में आप अगर हैं तो हमें सुन सकते हैं हमारे ऐप के द्वारा. एट द सेम टाइम हमारी वेबसाइट है ना www.sunriseradio.fm, लॉग ऑन कीजिएगा. सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स जो हैं, सब कुछ, सब इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं. एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं हमारे रेडियो के द्वारा. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड. द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274-488-935।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैशबैक ऑन योर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम. राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़, और तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.

once again, welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: जी मर जावा गुड़ खा के।
1: वाह व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Sunrise and music.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

back after the classic flashback only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो. मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर.

0: 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: रिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: Ready? One, two, one.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: पड़े।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

जी जनाब, घर में है, मकान में, सड़क पे, खुले मैदान में, हमारी तरह कलम कले बैठे हैं या बैठे हैं आप अपनों के दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, ससरी अकाल जी, आई एम वेलकम, खुश आमदीद, कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। जी जनाब, मैं हूं आपका अपना काशिफ, हाजिर खिदमत जनाब हमेशा की तरह। ये बंदा नाचीज, हकीर फकीर, आपके लिए यहां पे, आपके मनोरंजन के लिए। मनोरंजन का मतलब होता है किसी का मन जो है ना, वो रजाना, खुश करना। तो आपका मन जनाब, हम आपकी समातों से होके आपके दिल के दरवाजे पे ठक ठक ठक ठक दस्तक देती रहेगी मेरी आवाज। आपके मन में जनाब लड्डू फूटे या बम फूटे, ये जिम्मेदारी आपकी है। और जनाब, आप सुनते हैं मुझे हर संडे के दिन 2 से लेके 5 बजे तक। ऐसी वैसी बातें करते हुए जिन बातों का कोई ना सर ना पैर। जी बिल्कुल जनाब, जी ना, 103.2 FM पे और यॉर्कशायर की वादियों में आप 100.6 FM पे और दुनिया भर में sunriseradio.fm के जरिए, गूगल और एप्पल ऐप स्टोर के जरिए हमें आप अगर सुन रहे हैं कहीं भी दुनिया भर से भी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब, आपको बताएं कि मौसम बड़ा ही रोमांटिक है, बड़ा ही लवली डवली है और बड़ा ही खूबसूरत है। और इस खूबसूरत मौसम में जनाब, आपकी खूबसूरत मौजूदगी का एहसास, आपका साथ मुझे और ज्यादा। पहले ही हम दीवाने पागल चल रहे हैं और आपका साथ अगर रहा हमारे संग संग, तो बिल्कुल चन चढ़ेगा, दिन में चन चढ़ेगा। क्योंकि जनाब, हमने आपको याद किया, हमेशा कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, याद कराना पड़ता है, एहसास दिलाना पड़ता है, आपको बार बार बार बार रटाना पड़ता है कि जनाब, आप हमारे ख्वाबों में आते हैं, हमारी यादों में आते हैं, हमारी दुआओं में रहते हैं। बात कोई बड़ी ही इंपॉर्टेंट कर रहे होते हैं किसी से, पर पता नहीं क्यों आप हमारी बातों में आते हैं।

मैंने कहा वो क्यों भाईजान? कहते आप आ गए हैं ना, अब कोई धमाकेदार बातें, कोई चसदार गाने, हमने आपके लफ्ज जो है ना वो लफ्ज बा लफ्ज यहाँ पे लिख लिए थे, कहीं बोल ना जाऊं ना आपके प्यार मोहब्बत में। मैंने बताया ना पहले ही, बहुत ज्यादा दीवाना पागल सा हूं मैं, आपकी मौजूदगी का जैसे जैसे एहसास बढ़ता है

और ऊपर से जनाब आज मेरी एक दोनों आंखें नहीं, मेरी एक आंख भी लाल सुरख हो गई है। पता कैसे? आपकी वजह से, आपकी वजह से। कसमें, मैं कसमें उठाता नहीं हूं, पर ये मुझे उठानी पड़ रही है, रब गवाह है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना एक वीक में 3 घंटे तो आपको पूरे के पूरे दूं, लेकिन जनाब जब आपसे मुलाकात का टाइम जैसे जैसे करीब होता है ना, आपका तो पता नहीं। पर जनाब मेरे हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं, दिल में पेट में गुदगुदी शुरू हो जाती है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट ऐवें सज जाती है। जो भी मुझे इस हालत में देखता है ना आपसे मुलाकात पे आते हुए, वो मुझे मशकूक निगाहों से देखते हैं कि ये क्यों मुस कर रहा है और किए जा रहा है। मेरे किरदार पे उंगलियां उठाते हैं लोग आपकी वजह से, और ऊपर से एक आंख बिल्कुल ठीक और एक आंख मेरी लाल सुरख। पूछेंगे नहीं क्यों। असल में आपकी आपसे मुलाकात के चक्कर में ना जब मैं करना कुछ चाहता हूँ वो कुछ जाता है। जल्दी जल्दी में वो आदत बनी हुई है, घर से निकलते हुए रेडी होने के बाद जब मैं आफ्टर शेव अपनी लगाता हूँ तो आपसे मुलाकात का सोचते हुए इन सारे यानी कि हाथ पांव फूले हुए और देर भी हो रही थी, एक एक सेकंड गुजर रहा था, टाइम पे भी स्टूडियो में पहुंचना था, दिल में गुदगुदी, चेहरे पे मुसमुस मुस्कुराहट। और जब आफ्टर शेव लगाने लगा तो वो आफ्टर शेव की बोतल दड़ाल से नीचे गिर गई। शुक्र है कारपेट डला हुआ था तो वो बोतल टूटी नहीं, इतनी महंगी, वरना आपको खर्चा पड़ जाना था। पता है आप कंजूस, आपने किधर मुझे मेरी आफ्टर शेव की बोतल जो अगर टूट जाती आप की यादों में खोए खोए, और आपने कहां से मुझे देने थे पैसे। आप रखें अपने पैसे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, प्यार चाहिए, साथ चाहिए। वक्त मिले तो फिर वक्त निकाल के कॉल करने के लिए चंद लम्हे चाहिए, इस एहसास के लिए कि आप साथ निभा रहे हैं। वो भी अगर टाइम मिले, दिल आपका करे, जो मासूम सा दिल है ना जिसको फाड़ डाला हुआ है आपने जनाब, पता नहीं दुनिया के चक्करों में आपने इसको भी चक्करबाज बना दिया है, मासूम से दिल को। उसके ना कान हैं ना आंखें हैं, ना आपकी तरह हशियार है वो दिल आपका। वो बेचारा मासूम दिल अगर मेरे से बात करने के लिए जिद करे तो कॉल कीजिएगा 01274306666, 01274306666। और जनाब आफ्टर शेव की बॉटल टूटी नहीं, फिर हमने उसको चुका, चुक के फटाफट आफ्टर शेव अपने ऊपर उंडेला हमने। अब जब अपने ऊपर आफ्टर शेव की बॉटल हमने अब उंडेली तो वो तेज तेज से हम लगा रहे थे आफ्टर शेव, हुआ क्या, समझ गए होंगे आप, हमारी आंख में तेजी में आपने लगाया। कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हुआ है, हुआ है, मुझे पता है हुआ है, कसमें।

0: Now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
1: Kullo nafsen zaikatul maut.
2: Muslim funeral service mein kafan, dafan, phoolon ka intezam Islami shariat ke ain mutabik ghusl-e-mayyat ke liye aurat aur mard maujood hain. Top quality granite marble ke headstones aur full cover ko 30 saal ki guarantee ke saath banwane ke liye bhi मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 723030 दास ब्रेडफोर्ड 723030
3: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन

0: जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे प्यारे से एक दोस्त रहे जनाब, उन्होंने पहली बार कॉल की और उन्होंने शिकवा किया। कमाल होगी जनाब। आशिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका नाम भी बड़ा दिलचस्प, आपके अंदाज भी बड़े दिलचस्प। आपने कहा जनाब आप पुराने गाने नहीं लगाते। चले जनाब, मेरे ख्याल में तो वैसे जो मेरे हिसाब से 90s के गाने हैं वो पुराने होते हैं। मोस्टली मैं 90s के गाने चलाता हूँ। जब कोई मुझे कहता है कि आजकल के गाने लगाएं तो मैं ज़रूर लगाता हूँ आजकल के गाने भी, लेकिन आपकी फरमाइश जनाब हमने नोट कर ली। अब ज़रूर इसके बारे में सोचा जाएगा और शामिल किए जाएंगे कुछ पुराने गाने। अब मुझे नहीं पता कि वो 60s के होंगे, 70s के होंगे या 80s के होंगे, लेकिन आपने कहा पुराने गाने भी शामिल किया करें। ठीक हो गया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक भाई। हमने आशिक भाई आपके प्यार में, आपके इश्क में जनाब जो है ना वो पुराने गाने अब लिख लिया है, हम शामिल करेंगे। और जनाब हमारे साथ रहे एक और कॉलर, वो भी पहली बार शामिल हुए, शमस भाई। शमस भाई बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपसे भी बात करके बड़ा अच्छा लगा, और आपने जो पूछा वो हमने बयान कर दिया। और खान साहब ने भी वही सवाल किया था, अब उनको पता है कि उनका सवाल क्या था, बस दुआ किया करें बहुत सारे। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे साथी प्रेजेंटर्स के लिए ना आप दुआ किया करें, हम यहाँ पे आते हैं आपके लिए। और जी जनाब, अल्लाह पाक सेहत दे हमारे अमर भाई को और बाकी सब जितने भी हमारे जो सनराइज़ रेडियो की टीम है हमारी सारी की सारी, रब सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ो अमान में रब रखे। और सेहत कहते हैं सबसे बड़ी नेमत है, और जब बंदा बीमार होता है ना तब बंदे को एहसास होता है। मेरे वालिद साहब जो है ना अक्सर जब बीमार होते हैं ना तो उस वक्त उनको हम कहते हैं कि ये चीज़ छोड़ दें, वो डायबिटिक भी हो गए हैं, तो हम उनको कहते हैं, मना करते हैं, याद कराते हैं, तो बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं अब हम मीठी चीज़ कोई नहीं खाएंगे, परहेज करेंगे। और जैसे ही हमारे डैड बिल्कुल ठीक होते हैं ना तो यकीन करें वो हम उनके तौर तरीके, उनके वो चाले, वो चाल चलन देख के हमें हैरान होते हैं और उनको हम याद कराते हैं, कहते हैं डैडी आप अभी पिछले एक दो हफ्ते पहले इतने वादे हमसे किए आपने कि आप कोई मीठी चीज़ नहीं कहूँ खाऊँगा, बदपरहेजी नहीं करूँगा, तो अभी आप देखें क्या कर रहे हैं। तो वो जनाब हंस के मौज में टाल देते हैं और फिर हमें बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जो है ना अपने प्यारों को जब आप अपने सामने देखते हैं परेशान, बीमार या तकलीफ़ में, तो आपका दिल कुड़ता है, चेहरे पे स्माइल रखनी पड़ती है, और आप सबके लिए और दुनिया वालों के लिए, क्योंकि दुनिया को हंसते चेहरे, हंसते मुस्कुराते अंदाज अच्छे लगते हैं। रोते हुए आप अकेले होते हैं, याद रखिएगा, हंसते हुए सब आपको ज्वाइन करते हैं। तो जनाब कोई और भी आपको दुख सुख में ज्वाइन करता है आपको पता है, वो जनाब वो हस्ती है जो आपको आपकी परेशानी में, आपकी खुशियों में एक कॉफ़ी की या गर्म चाय की प्याली पिलाती है, है ना? गेस करें कौन हो सकता है वो जो पिलाती है आपको, जो आपके दुख सुख का साथी होती है, वो कौन होता है? अब हम मर्द हैं, अब उस प्रस्पेक्टिव से बात करेंगे ना, मर्दों के प्रस्पेक्टिव से, है ना? या जीवन साथी तो जीवन साथी होता है ना। अच्छा वैसे कहते हैं कि बीवी जो है ना वो अब मेरी बातें किधर से किधर निकलेंगी देख लीजिएगा, किधर से जाके सिरा निकलेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा कहते हैं, ऐसे ही शरारत आई ना अभी अभी दिमाग में बात करते करते, अच्छी खासी बात कर रहा होता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों शरारत सूझती है, मेरे अंदर का बच्चा जो है ना वो बाज नहीं आता है हेरा फेरियों से। अच्छा बीवी कहते हैं घर का चिराग होती है ना, ये बात है ना, बीवी घर का चिराग होती है ना, उससे रोशनी होती है घर में। लेकिन सोचें अगर घर में 3-4 चिराग हो जाएं तो कितनी रोशनी हो जाएगी।
1: गरम चाय की प्याली हो
0: खवातीन सारी, अब मुझे पता है मुझे मारने का सोच रही होंगी। ऐसे रोशनी तो ज्यादा होगी ना अगर 3-4 चिराग हो जाएं घर में, सोचिएगा, मैं भी सोचता हूँ।

0: जी जनाब, एक गरम चाय की प्याली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, और बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जनाब, हर ख्वाहिश पे दम निकले जनाब। जनाब खान साहब ने कहा था पंजाबी गाने शामिल करें शो में और धमाकेदार उन्होंने कहा था। अच्छा जी, रहीम भाई ने कॉल की और सोनिया आपकी कॉल मिस हो गई। आज सभी जो हमारे भाई लोग हैं जेंटलमैन हैं जनाब, वो बाजी ले गए कॉल्स करने में, और लेडीज़ जो है ना वो अभी वो मसरूफ़ हैं, शॉपिंग कर रही हैं, और दूसरा जनाब वो कुकिंग कर रही हैं, है ना, और काफ़ी सारी या फिर कुछ मुझसे नाराज़ भी हो गई हैं, जैसे मैंने कहा ना कि घर में अगर 3-4 चिराग हो जाएं तो शायद इसलिए भी अभी लेडीज़ की कॉल जो है ना वो अभी सोनिया ने ही कॉल की है, बाकी सभी हमारे जितने भी ब्रदर्स हैं ना उन्होंने कॉल्स की हैं। और रहीम भाई, आप अपनी बेटियों के साथ हमारा शो सुन रहे हैं जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आपकी बेटियों के लिए कोई खूबसूरत सा गीत लगाएं, आप जो भी गीत लगाएंगे वो अच्छा ही होगा। आपका शो हम सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं, और हमारी फैमिली भी सुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम भाई हौसला अफजाई करने के लिए, और आपकी बेटियों के लिए आपकी तरफ से। अब मैं सोच में पड़ गया हूँ कि कौन सा गाना ऐसा हो सकता है। कभी कभी वो जो आप एकदम से मुझे जो है ना, एक मस्ती में मैं चल रहा होता हूँ, और इतना कोई मुश्किल नहीं होता है, ना स्क्रिप्टेड शो होता है, जो होता है बस आपकी बातों में से बातें निकलती हैं, और कुछ मेरी ऊटपटांग सी शरारतें मेरे दिमाग में अचानक सी आ जाती हैं, और वैसे कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं जो है ना वो शरारतें बस ज़रा कम करूँ, लेकिन अभी कोई टाइम ऐसा आता है, कोई मौका ऐसा आता है, कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं कि वहाँ पर मेरे अंदर का बच्चा भी कुछ ख्याल कर जाता है, और बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है, और सभी बेटियों का अपने बाप से प्यार, अपनी माँ से, और सभी माँ बाप का अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, अपने बच्चों से बड़ा प्यार होता है। रब सलामत रखे सब पेरेंट्स को, सब पेरेंट्स के बच्चों को, और प्यार मोहब्बत इत्तेफाक खुशियाँ कायम दायम रखे आपकी। और जनाब कोशिश होगी, मैं गाना ढूंढता हूँ, और अचानक से शो के वो जो है ना फॉर्मेट से हटके मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अभी, क्योंकि फ्लैशबैक में एक क्लासिक हिट ऑफ द आवर का टाइम आ रहा है, तो मुझे ज़रा वो पासे लगा लेने दें खैर खरीयत से, और फिर उसके बाद जनाब जो आपने हम पे आजमाइश डाली है वो आप साथ ही रहिएगा, वो गाना ज़रूर होगा, और वो गाना सिर्फ रहीम भाई आपकी बेटियों के लिए तो होगा ही होगा। आपने नाम नहीं बताया बेटियों का, सभी जो बेटियां हैं और सभी जो पेरेंट्स हैं जनाब, आपकी ये जो अनोखा सा रिश्ता रब ने बनाया है पेरेंट्स का और बच्चों का, और बच्चों का और पेरेंट्स का, आप सबके लिए ये गाना होगा, लेकिन वो बाद में, ठीक है, आप ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, पहले फ्लैशबैक और उसके बाद फिर इस सावर का जो आखिरी गीत होगा ना वो वाला गीत होगा जो आपके इस खूबसूरत से अनमोल से रिश्ते के नाम होगा। लेकिन अभी ये गाना ज़रूर आप सुनिएगा जो क्लासिक हिट ऑफ द आवर में होगा। हमें किसने कॉल की थी शो के आगाज़ में ही, खान साहब के बाद कॉल आई थी, शम्मस भाई थे गालबन, हाँ, या आशिक भाई तो नहीं थे ना, आशिक भाई ने कुछ और कहा था, शम्मस भाई ने या आशिक भाई ने कहा था पुराने गाने लगाए, होर पुराने अपनी पैदाइश तो ही पुराने गाने हूँ मैं लभ के ते तुहाडी फरमाइशां पूरियां करनियां ने, बस मैं होर मैं की करना है, ते साड़ी अख लाल है हाले भी जनाब, और आपकी मोहब्बत में जनाब अभी भी दुख रही है, और पता नहीं क्या हाल हो गया, अभी मैं देखता हूँ ब्रेक में जब तक आपकी कॉल्स आती हैं, तो 01274306666 है जनाब आपकी कॉल्स शामिल होती हैं। अच्छा, जो टिकटॉक पे मेरे साथ होते हैं, जितने भी मेरे टिकटॉक की फैमिली मुझे फॉलो करते हैं, टिकटॉक पे सुनते हैं या मैसेजेस करते हैं, टिकटॉक पे लाइव तो नहीं अब मैं शो ये मेरा जाता, लेकिन टिकटॉक वाले मुझे सुनते हैं ट्यून इन करके सनराइज रेडियो को 103.2 FM पे, 100.6 FM पे, तो स्पेशली सुनते हैं, लेकिन कॉल्स ही करते हैं, लेकिन मैसेजेस मोस्टली मुझे टिकटॉक पे मेरे अकाउंट पे आते हैं साथ साथ शो में, तो उनके मैसेजेस भी शामिल करूंगा, साथ साथ कॉल्स भी शामिल करूंगा. लेकिन इफ यू आर स्ट्रीमिंग ऑन टिकटॉक लाइव और थिंकिंग अबाउट गेटिंग स्टार्टेड, जॉइन द सनराइज क्रिएटर नेटवर्क, अ यूके टिकटॉक लाइव एजेंसी हेल्पिंग क्रिएटर्स ग्रो देयर ऑडियंस, डेवलप देयर ब्रांड एंड गेट प्रमोटेड ऑन सनराइज रेडियो. टू फाइंड आउट मोर एंड अप्लाई, विजिट द सनराइज क्रिएटर नेटवर्क पेज एट www.sunrise.radio. दैट्स www.sunrise.radio.
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक.
0: जी जनाब, टाइम हो गया है 2:46 हो चुके हैं.
2: सनराइज म्यूजिक.
3: तेरी गलियां
4: कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया.
5: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना.
4: चाचा केड़ा चाचा?
5: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है. सिर्फ 2 pound ना कानस लाने ना 1 pound. छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं. ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है. जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने.
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935.
6: आर यू बेस्ड इन द यूके? आर यू अ कंटेंट creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
7: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
6: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
7: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
6: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect and succeed.
8: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
9: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you?

सुना जो पुराने पुराने गीतों को सुनने वाले हैं, और वैसे तो मुझे लगता है कि 90s के गाने इनफ पुराने होते हैं, लेकिन उससे भी पहले के गाने जो आप चाहते थे सुनना, जनाब जितने भी दोस्त हैं जो कॉल्स करते हैं और हमेशा फरमाइश करते हैं, उनका दिल और उनकी रूह राजी होगी होगी, बाकी खैर है जनाब। अच्छा जनाब, हमारे साथ बिल्कुल साजिद भाई रहते हैं हमेशा जनाब, वो भी अपनी फैमिली के साथ हमेशा हमें सुनते हैं। और अच्छा भी जितने भी दोस्त अपने फैमिली के साथ मिलके हमें सुनते हैं, उनके लिए ये खास तौर पे गाना होगा साजिद भाई और उनकी तरफ से उनकी फैमिली के लिए, और खास तौर पे रहीम भाई ने जो कहा हमें उनकी बेटियों के लिए। रहीम भाई, ये गाना उम्मीद है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा और आप भी और आपके बच्चे भी इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे, और बाकी सब जितने भी पेरेंट्स हैं आपकी तरफ से आपके बच्चों के नाम, आपके बच्चों की तरफ से आपके नाम, क्योंकि आप भी डिज़र्व करते हैं जनाब, इंक्लूडिंग हमारे पेरेंट्स भी, सभी के सभी जो फैमिलीज हैं उनके लिए, क्योंकि जनाब इस गीत की शायरी बड़ी डीप है, बड़ा खूबसूरत गीत है। माहौल थोड़ा सा ट्विस्टेड सा रहा इस आवर में, है ना। एनीवेज जनाब, अगर आप भी इमोशंस की इस रोलर कोस्टर में हमारे साथ रहे शुरू से, तो ये आवर तो हो गया कंप्लीट, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ जो है ना इमोशंस की एक रोलर कोस्टर सी अप एंड डाउन होती रही। अगले आवर में कुछ संभालते हैं, इस ब्रेक लगाते हैं।

बिल्कुल जनाब, काली काली आंखें, बिल्कुल काली काली आंखें, बिखरी बिखरी जुल्फें, जिसके चक्कर में बड़ी दुआएं मांगी, बड़ी मन्नतें मांगी, एक दिन बड़ी मुश्किल से वो हमारे घर आ ही गई और अम्मी ने बोला, काशिफ बेटा जाओ, बहन आई है, बहन के लिए समोसे लेके आओ। बेड़ा खरक हो गया। जी जनाब। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं और वो जनाब हैं बड़े तावले।

हाडे घर भी कोई आएगा जी जनाब, लेकिन उम्मीदों पे पानी फेर दिया। हमारी वालदा ने जब कहा जाओ जाके समोसे लेके आओ आपी के लिए। अच्छा जनाब, आंटी दीपा है हमारे साथ और हंस रही हैं। वो हमारे साथ खोल गए हैं और बड़ी लंबी चौड़ी गपशप होती है उनके साथ। कहती हैं काशिफ, पता सारे नहीं हुई सुनना वह जिसकी जिसना दिल, बस जो कुछ आपने कहा बिल्कुल वो सच है। तारीफ मेरे रब की और बाकी आप सब की जनाब, जिसको जैसा बनाया रब ने खूब बनाया। अच्छा जनाब, साड़ी गली तुसी भी आना चाहो ते आ सकते हो। मैनू कहंदे ने काशिफ, थोड़ा अपना काशिफ कोई गैर नहीं। 01274306666 01274306666। जनाब बचपन की कुछ यादें ताज़ा हुई। हमारे साथ कॉलर थी समीना। समीना पहली बार आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा। जनाब अच पहली बारी कॉलर जड़े ने ना, ये तीजे कॉलर ने जड़े अगे ते साढ़े नाल आए। आशिक आशिक ना होवे बंदे दा ते क्या ही कहने। आशिक भाई हस रहे होणगे। शमस भाई कॉल की सी तुसी जनाब। अच्छा जी, मैंगोज लैन जा रहे सन साजद भाई अपनी बेटी मानूर दे नाल। गाना लाया सी असी तुझको ना देखूं तो, बड़ा खूबसूरत रोमांटिक रोमांटिक गाना नहीं था, इमोशंस से भरा हुआ गाना था रिश्ते नातों के लिए। अच्छा आप जा रहे हैं मैंगोज लेने के लिए। अच्छा मैं भी मैंगोज लेने जाता हूँ, मेरे खास यार दोस्त बेली मित्र है, उनकी शॉप है, वो मुझे बिल्कुल, वो कहते हैं काशिफ गाने तब पुराने लाना, वो भी पुराने गानों के बड़ा गिला करते हैं। लास्ट शो में फिर मैंने उनके लिए गाना लगाया था, जब हम जवां होंगे जाने कहां कहां और कहां कहां होंगे, जब जवां होंगे तो फिर बताएंगे आपको कि जनाब हम कहां हैं। अभी तो बचपना चल रहा है, लेकिन जनाब वो जब मैं उनके पास मैंगोज लेने जाता हूँ, वीकली वीकली इकट्ठी डिलीवरी लेता हूँ मैंगोज की, तो वो मुझे कहते हैं जिस दिड़ा लासे ना पुराने गाने तो फिर मैं तुकी डिस्काउंट दे सा। मैंने कहा मैं डिस्काउंट तो कदम मंगे ही नहीं, तुसा पैसे पकड़ो जड़े हैं पूरे, पर गाने मैं अपनी मर्जी ने ला सा। उधर और बंदे भी खड़े हुए थे, उन्होंने भी जनाब कहा कि काशिफ गाने तो ठीक लगाता है, लेकिन वो साहिब जिनकी ड्यूटी मैंगोज पे होती है वो जनाब मेरे पास मेरे साथ अड़फस लगा के बैठे हुए हैं। अभी सुन रहे होंगे और नेक्स्ट ट्यूसडे उनसे मुलाकात होगी। ट्यूसडे के ट्यूसडे मैं मैंगोज पिक करने जाता हूँ। साजिद भाई आप आज क्या दिन है? हाँ संडे, आप संडे पिक करते हैं। अच्छा ठीक हो गया। वो फ्रेश डिलीवरी आती है ना ट्यूसडे, वो मुझे कहते हैं आप आया करो फिर मैं ले जाया करो इकट्ठे मैंगोज। मैंगोज के सीजन में मैंगोज टका के खाने चाहिए, है ना। अच्छा मैंगोज से याद आया मुझे बचपन की एक और बात याद आ गई। अच्छा बचपन में मैं वैसे अभी भी सादा हूँ, लेकिन बचपन में ज्यादा सादा होता था। चोरी चोरी जब अम्मा जी गर्मियों में सोती थी ना दिन को, तो क्या किया मैंने एक दिन,

अच्छा मैंने जनाब गर्मी थी तो मैंने कहा कि ठंडा ठंडा खरबूजा खाते हैं। अच्छा ठंडा ठंडा खरबूजा खाया मैंने अकेले शिकर दोपहर गर्मियों की। पता आपको जून जुलाई अम्मा जी सो रही थी, चोरी चोरी फ्रिज खोला, ठंडा ठंडा खरबूजा निकाला, काटा, बैठे खाया टका के। लेकिन जनाब खरबूजा बड़ा फिक्का, बहुत फिक्का, गले से नीचे ना उतरे। अब करें तो करें क्या, अब फ्रिज से चोरी भी कर ली, काट भी लिया, अब खाना तो बनता था ना, बेशक फिक्का था। शाम को अम्मा जी उठी, अम्मा जी ना फ्रिज में ऊपर नीचे सारे वो जो फ्रिज के पोर्शन होते हैं, और परेशान। मैं समझ गया कि शामत आ गई, काशिफ खरबूजे की चोरी पकड़ी गई। तो अम्मा जी ने कहा पुत्र, मैंने कहा अम्मा जी क्या ढूंढ रही हैं? कहती हैं पुत्र कद्दू ढूंढ रही हूँ, कद्दू रखे थे यहाँ पे, एक कद्दू गायब है बीच में से।

0: जी ना, वो हमारी गली आए थे, हमारे घर भी आए थे, फिर अम्मा जी हमारी हमें समोसे पकौड़े उनके लिए लेने भेज देती थी शॉप पे। सारा प्रोग्राम, सारी दुआएं जनाब काम नहीं आई। लेकिन
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जनाब बातें बहुत सारी हैं करने वाली। कॉलर्स अभी उठ गए हैं हमारे वीकेंड पे, मोस्टली ख्वातीन को भी वेल लग गई है। बहुत सारी कॉल्स हमें मौसूल हुई हैं और बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं। जब तक मैं वो बातें आपके साथ करना लूँ, आपको पता है कि मेरे पेट में मरोड़ बड़े ज़ोर ज़ोर से उठते रहेंगे। तो इससे पहले कि मरोड़ ज़्यादा उठें और काबू से बाहर हो जाएं, हमें ये बातें आपके साथ शेयर करनी होगी जल्दी जल्दी। लेकिन वक्त को भी ध्यान रखना होता है, उसका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि वक्त हाथ से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। बाकी सब कुछ निकल जाए हाथ से, वापस आने का चांस होता है, लेकिन वक्त नहीं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: अब बताएंगे आपको सही से टाइम। जनाब टाइम हो गया है 3:19 और मिलते हैं जनाब आपसे खूबसूरत से गाने के साथ। और खूबसूरत इसलिए कहा कि ये होगा बिल्कुल आपकी खूबसूरत खूबसूरत समातों के नाम।
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
6: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
5: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
6: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
5: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
0: जी जनाब, आप सबके नाम खूबसूरत सा गीत। हाय सोनिया, कुछ परेशान थी लास्ट वीक से भी, और आपने बेटे के लिए, आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं और कहती हैं कि जब आप आते हैं तो बहुत सारी परेशानियां कम हो जाती है, बहुत सारी फिक्रें, बहुत सारी टेंशन दूर हो जाती हैं आपकी। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी भी टेंशन परेशानियाँ आपको कुछ देर के लिए भूल जाएंगी, और बाकी रब से दुआ है कि आपकी परेशानियाँ टेंशन के लिए रब आपके लिए बेहतरी के सामान करें। लेकिन सोनिया, आपकी सादगी और आपके अखलूस के लिए दिल करता है कि सदके जाऊं। और समीना, आपने बचपन की यादें ताज़ा की हमारे साथ, हमारी कुछ बातें सुनी, पहली बार कॉल की, लगा ही नहीं आपसे पहली बार बात हुई, दोबारा से आपका नाम लेने का जी चाहा, और आपकी इस खूबसूरत अंदाज के भी मैं सदके जाऊं। आयशा हैं जनाब, दोबारा आ गई हैं अपनी शायरी का पटारा लेके, और कहती हैं शायरी सुनाऊंगी नहीं कि अगर तुम्हें मरोड़ उठते हैं काशिफ, जब तक तुम बातें करना लो तो हमें भी मरोड़ उठते हैं, जब तक तुमसे शायरी शेयर ना कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी इस खूबसूरत से अंदाज के, इस काबिल समझती हैं हमें, शायरी सुनाती हैं, वो फिर ही सही, इसके मैं सदके जाऊं। और मिसेज कौर, आपके लिए कुछ नहीं कहूंगा, सूरज को दिया या चिराग कैसे दिखाऊं, आप इतनी प्यारी हैं, आपके लिए कुछ भी बोलूंगा तो कम ही लगेगा, मिसेस कौर पंजाबी गीत आपको बड़े अच्छे लगते हैं, आपको हमारा अंदाज अच्छा लगता है, आपको हम बड़े अच्छे लगते हैं, मीठा कहती हैं आप मीठा। चले जनाब ये खूबसूरत सा गीत मिसेस कौर की वजह से जनाब आपके मिसेस कौर ताडे कसम ताडे सदके जावा मैं। और आंटी दीपा कहती है काशिव आज मेरे मेहमान आए ना ते दूजे कमरे विच बैठे न नाल वाले कमरे बैठे ते मैं तू की कॉल करनी पिया मैं आया के अपने पुत्र नाल चल पूछा ते आने तू मस्तियां लगियां करन ते ना करया कर मैं क्या किया कि आंटी क्या करा मजबूर है ना आने तू ते मजबूर है ते ए लोग तू की नजर लाई छोड़ सन्नी नजर लगी जासिया मैं को नहीं आंटी अगर ढेर सारियां लगियां ते छलनी होए पिया बिल्कुल आंटी छलनी होया तुसा ना काशिफ जाली नहीं होनी जिस तरह जाली जाली वाला कपड़ा तकिया ना इस तरह लोकां नजरां लाइया रब ना भी खौफ नी ना की तब मैं छलनी होया पहले तो होर 15-20 नजरां लगी गई ते छाननी ना छलनी ना कह जासी तुसा आने काशिफ मैं पकौनी पिया जड़े मेहमान आए ना ते मैं बनाई है बिरयानी ते तू की दसी छोड़ा मैं ना अजकल नी कुड़ियां और बिरयानी बनानी है चिकनी च पानी घोली कहता है छान अछनी रहनी बिरयानी चू मैं किधरे तू की बिरयानी खलासा अपने हथे नी आंटी तुसा हर बारी आने हो ते लारे लाने हो तो मिर्जा हारा क्या आख्या सी ए मिर्जा गालिब हर सन वो बाणे होने सन ए मिर्जा गालिब वो नहीं साढ़े घर जड़ी नहीं घर नहीं साढ़े स्कूलों ने बाहर समोसे नहीं चाट आली रेहड़ी लाने से मिर्जा गालिब वो वाले गालिब तो उन्हें आख्या सी एक दिहाड़ा वो आने से असं उन्हें को चाट खाने होने सन तो धार करने होने सी निके होने सता है पॉकेट मिनी हफ्ते ने हफ्ते लभनी सी तै जाई कहता

ताऊ ने बड़ा मशहूर शेर आख्या सी उस मौके पर साढ़े वास्ता आंटी दी बात तुसा ने नाम ही जड़ा तुसा मिकी बिरयानी ने लारे लाने हो ना ता गोश्ता ने लारे लाने हो ता और क्या बनाया ने आहने दही पल्ले बनाए ता जड़े तुसा ने लारे इस पर मिर्जा गालिब और साढ़े जड़े समोसा चाट लाने से उन्हें फरमाया सी तुसा ने लारे ता रह गए सारे कवारे पर फिर भी सदके जावा आंटी जी तुसा ने लारे भी तुसा

जनाब इस तरह से कोई आपके सदके नहीं जाने वाला, एक मैं ही हूँ सादा सीधा जलेबी की तरह। शमरेश भाई आपके भी सदके जाऊँ, आप कहते हैं आए ना आपको आम खिलाएं, मैंने कहा नहीं जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कह रहते हैं हर वक्त काम काज पे, हमने कहा जनाब सुने हो कुछ खड़ सो इतने पैसे अने क्या करिए जनाब, बिल शिल भी तो पे करने होने ना, तो इस वास्ते कमे भरी रहने हैं मोस्टली। तो जनाब वाकई अच्छा पहले जनाब टाइम होना सी, अज बचपन दी गल्लां बहुत याद अच्छनियां पईयां, पता नहीं क्या गल है। पहले जनाब बचपन च मी याद है ते क्या होना सी वी जदों दो बंदे लभने से ना इस तरह जिदां शमरेज भाई असां की लभे न ते गल्लां होनियां सन कि कैखरीयत शरीयत पुछने होने से तक क्या मी की शरारतां हुण अठ को मैटक आवनियां दिमागै च, हुण तुसां आसो इक उत्थों गल कड्डी सी तुसां नाल वी इंजॉय होया सी, जरा गौर तां करिया करो ना। ते उह होणा इह सी कि पहले बंदे मिलने से ना एक दूए की ते आमने सामने अच्छने से धक्के करने से भी खरीयत पूछने होने से क्या हाल है तुसा ना फैमिली ना का हाल है अम्मा अब्बा भैन भ्रा ते ये पूछने होने से गल्ला इयो गल है अला हुण पूछने ना आमना सामना होना ना जिस तरह साढ़े शमरेज भाई नाल होया साड़ा मकालमा फोन पर ते खरीयत नहीं पूछने ज्यादा हूँ क्या पूछने है बिल तुहाड़ा कितना आया तो माड़ा कितना आया। अजकल बिल्ला जनाब मत मारी सारिया नहीं ते इयो गल्ला करने है तुहाड़ा बिल कितना आया ते माड़ा बिल यरा इस बारी इतना आया ते बिल्ला ने बस या कौंसल टैक्स माड़ा इतना आया ते वधी गया ते तुहाड़ा इतना आया ते जनाब रोले जे ये रोले मुक्की जान ते गड्डी ना रोला पई जाना, गड्डी माड़ी खराब हुई ते कोई गैरेज चंगा जिहा बाई छोड़ो ते गड्डी ना रोला मुक्या ते जनाब गड्डी नहीं हुण गड्डी नवीं किन्नी है गड्डी नहीं एमटी आई गई है गड्डी बड़े बड़े रोले सरकार इत्थै अपनी तो होश ही नहीं रहनी इतना। तो इस बारे जनाब बहुत शुक्रिया तुसाने अंबानी तुसा भी लारा ही लाया मी लगना इसे तरह बरल जो भी आया तुसा सुलह तो मारी ना, कई ऐसे जड़े घलियां घलियां अंब खाने साजिद भाई यार तो सुलह भी ने कदम मारी ने ना

0: इसे तरह घले ही अंब खाने ते हजम हो जाने तुसा कि सही अंब बिस्मिल्ला पड़ी खाए तो सारा कुछ ठीक हो जा। असी बड़ा माड़ी निगाहवां जड़ियां ना ये दिहाड़े पिछले छे वीकां तो अगले छे वीकां तक तुसा ने ता अंबा भरन जनाब जितने भी तुसा अंब शंब खाने उन्हां शौकां नाल बची तो माड़े कोलों बची तो खाओ क्योंकि माड़िया नगाहवां च अंब शंब जनाब बहुत पसंद ने मिकी अंब। तो हूँ गल अंबां दा टुरी गई है तो हूँ कॉलर भी साढ़े नाल वेट है भरन तो हूँ उन्हें कि हैलो कि मूहे नाल आखसा इसे मूहे नाल आखसा ना क्योंकि उन्हें मिकी आखना काशव जी तुसा अपने रोने घट रोया करो साड़ी गल ज़्यादा सुनया करो असा कि तुसा बहु वेट कराने हो। तो आयशा आर जनाब कुछ है भी बंदे बड़े डाढ़े डाढ़े जड़े कोलै पर उन्होंने बारे तुसा कि बाने मजीद कि एक केड़े बंदे दो डाढ़े जड़े साढ़े नाल कोलै पर वेट करने पेन तो मुड़ी कैशने हाँ सरकार एक सोहने जे गाने नाल मैं पठवारी कियां बोलना पाया ये मिकी नहीं पता क्योंकि पंज बचपन दी गल्लां फिर पठवारी च ही होईयां सारे सारे जड़े एक्सीडेंट होए ना साढ़े नाल हालात वाकयात होए जड़े भी हादसे होए ये साढ़े नाल पठवारी जबान च ही होए तो पठवार ने इलाके च ही होए ठीक है। पंजाब ही जाए ना सी खाली गर्मियों की छुट्टियां गुजारन तो उत्थै जनाब आ गर्मी की छुट्टियां उत्थे होनिया सन पंजाब तो उत्थे फिर असी पंजाबी बोलते सा तो मुड़ बाकी सारे जड़े महीने होने सन ना वो फिर पठवारी होने सन। जनाब एक ब्रेक हूँ मैनू लैन दो प्लीज़।
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
5: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
4: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
5: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੰਡੀ ਮਾਰੀ ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡ ਨਾ ਕੰਨ ਸਲਾਣੇ ਨਾ 1 ਪੌਂਡ ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
4: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ?
5: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਟੈਲੀਫੋਨ 01274 488 935।
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

जी आयशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे बात करके हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। और जनाब एक और खूबसूरत संगीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें सामिया हमारे साथ। सामिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, हमेशा हमेशा अच्छा लगता है। लेकिन जनाब आज आपने कहा जनाब मैंगोज की बात हो रही है, तो कुछ मैंगोज हमें भी बजवा दें। अच्छा, आपको बजवा दूं? कितने मैंगोज बजवाने हैं बताएं से। इस हफ्ते पता क्या करेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम आपको बजवा देंगे हमारे हिस्से के, आप खाइएगा ठीक है।

और जनाब जसपिंदर जी आप हमारे साथ आए, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड यू आर एंजॉयिंग अवर शो. बिग थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो एंड यू सेड यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस ऑन टिकटॉक एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमें टिकटॉक पे भी फॉलो करती हैं और आप हमें बर्दाश्त करती हैं वहाँ भी. यहाँ तो हफ्ते में एक बार आते हैं, आप कैसे बर्दाश्त करती हैं ये आपने नहीं बताया. और जितने भी टिकटॉक पे हमें दोस्त वहाँ पे मैसेजेस कर रहे हैं उनके मैसेजेस में शामिल कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कॉल्स यहाँ पे ज़्यादा आती हैं ये तो हमें पहले यहाँ पे जितने दोस्त हैं उनके नाम पहले लेने होते हैं. एक आयशा है जनाब टिकटॉक पे, उन्होंने मैसेज किया है और उन्होंने कहा है कि जी वो हमें सुन रही हैं, एंजॉय कर रही हैं. थैंक यू सो मच. हलीमा हमें सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और करण भाई थैंक यू सो मच, आपने भी ट्यून इन कर रखा है सनराइज रेडियो. और जनाब इफ यू आर स्ट्रीमिंग ऑन टिकटॉक लाइव और थिंकिंग अबाउट गेटिंग स्टार्टेड, जॉइन द सनराइज क्रिएटर नेटवर्क, अ यूके टिकटॉक लाइव एजेंसी helping creators grow their audience, develop their brand and get promoted on Sunrise Radio. To find out more and apply, visit the Sunrise Creator Network page at www.sunrise.radio. That's www.sunrise.radio. और जनाब यकीन नहीं आता आप ऐसे साथ देते हैं, ऐसे प्यार देते हैं, ऐसे एहसास दिलाते हैं अपनी मोहब्बत का, अपनी मौजूदगी का, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है. और आयशा जी आपने अपने बचपन के वाकयात शेयर किए हमारे साथ, आपने कहा आपने कबूतर चोरी किए थे. कबूतर पड़ोसियों के? हमने तो अपने घर से अपनी ही फ्रिज में से खरबूजा चोरी किया, वो भी हमें चोरी करने का पता नहीं था. वो पहली और आखिरी चोरी थी और वो खरबूजा नहीं बल्कि वो कद्दू था और हम इतने सादे खरबूजा समझ के खा गए. चोरी करना भी ठीक से नहीं आई, उसी दिन तौबा कर ली. और आप पड़ोसियों के कबूतर खाती रही?

अच्छा आपको याद भी है आपने वो जो कबूतर चोरी करने का महीना दिन साल टाइम। अच्छा ख्वातीन कैसे ये सब कर लेती हैं? मतलब बिल्कुल आपको हर चीज की डेट टाइम खासतौर पे बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी की डेट कैसे याद रख लेती हैं आप? और समीना आपने दोबारा कॉल की और आपने कहा कि आपकी बातों से क्यों नहीं लगता कि आप सादे थे या बचपन से लेके अभी तक आपकी साधु वाली बातें नहीं है, ये कौन आपको गलत फहमी डालता है? समीना सच में मैं बहुत सादा हूँ, आपको यकीन नहीं आता। अच्छा अभी भी बड़ा सादा हूँ मैं। एक बार डॉक्टर के पास गया डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी क्योंकि मुझे जल्दी थी, मैं जल्दी में वो दवाई की पर्ची लेके भागा डॉक्टर साहब के टेबल से। पूरे शहर में गया कहीं से वो मेडिसिन मुझे नहीं मिली। वापस डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो दवाई आपने लिख के दी है ये तो पूरे शहर में किसी फार्मेसी किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिल रही। तो डॉक्टर साहब ने जनाब कहंदे ने वो सादिया वो चलिया वो ते मैं वो दवाई नहीं सी लिखी, वो ते मैं दवाई लिखण तू पहले वो पेन चला के वेखिया सी कि पेन चलदा पिया काम करदा पिया या कोई नहीं, वो ते मैं इंज स्क्रिबल किया सी खाली पेज ते दवाई हाले मैं लिखनी सी ते तू दवाई दी पर्ची चुक के

0: उस्तानी जी आए जी हमारे साथ, कह दिए मैं उस्तानी बोल रही हूँ, लास्ट वीक भी आपने कॉल की थी और आप कह दिए कि हमने जो बात उनके लिए लास्ट वीक बोली थी वो पूरा वीक उसको याद कर करके हंसती रही। मैं भी कहूँ मुझे इतनी चीखें क्यों आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्तानी जी। आप कहती हैं आप खुद बड़े उस्ताद हैं, हमें पता लग रहा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको ही मैं सियाना लगता हूँ बाकी सबको जी। एनीवेज उस्तानी जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया आपने हमेशा की तरह, और अब आप भी रेगुलर हमारी कॉलर हो गई हैं और आने वाला खूबसूरत सा गीत आपके लिए लगाएंगे इस उम्मीद पे कि आपको अगर पसंद आया तो दोबारा आप जरूर हमें बताएंगे।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: जनाब टाइम हो चुका है 3:50।
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 pound ना कानस लाने ना 1 pound छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
5: आर यू बेस्ड इन द यूके? आर यू अ कंटेंट creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
6: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
5: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
6: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
5: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect and succeed.
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है दिन के 4:07।

92 FM पे यॉर्कशायर में और इसके अलावा 100.6 FM के जरिए भी आप हमें सुनते हैं साफ और शफाफ आवाज में। और जनाब ये आवाज जो आपके समातों से हो कि आपके दिल के दरवाजे को तोड़ने ही वाली है, क्योंकि पिछले दो घंटे से हम आपके दिल के दरवाजे पे खटाखट जनाब ठक ठक ठक ठक दस्तक दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका दिल नहीं, आपके सीने में पत्थर है। इससे पहले कि ये मेरा वहम यकीन में बदल जाए, 5 बजे के बाद से लेके पूरा वीक मैं यही सोचता रहूं कि पत्थर दिल वालों से वास्ता पड़ा तेरा काशिफ। हाय, पत्थर भी कभी मोम होते हैं, दिल मोम होते हैं। जनाब आप सब हैं हमारे अपने और मैं हूं आपका चल्ला दीवाना। बिल्कुल जनाब, ये हकीर फकीर सा बंदा ना चीज, इसका नाम आप याद रखते हैं कि नहीं, आपकी मर्जी। मुझे कहते हैं प्यार से, गुस्से से, इत्मीनान से, जल्दी में जनाब काशिफ कहते हैं मुझे। जी जनाब, और दोस्त अहबाब दुनिया भर में हमें द गूगल और एप्पल ऐप स्टोर के जरिए सुनते हैं और जनाब साथ निभाते हैं। इसके अलावा टिकटॉक की दुनिया में भी जो दोस्त हमारे टिकटॉक की एक बड़ी मासूम सी क्यूट म्यूट सी फैमिली है। जनाब एक मैं आपको बात बता दूं, कुछ बहुत सारे अकाउंट्स, क्योंकि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है तो मैं जिससे जितने भी फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे मुझे फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप जहाँ जहाँ मुझे फॉलो करते हैं बराए मेहरबानी बिल्कुल काशिफ के नाम से जो भी बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, तो बहुत सारे अकाउंट्स फेक अकाउंट्स हैं जनाब मेरे नाम से, और दोस्त बनाते हैं उनकी मोहब्बत है, कुछ मोहब्बत में बनाते हैं, कुछ शरारत में बनाते हैं, कुछ खुदा से बेखौफी के आलम में होता है इंसान भटक जाता है, इंसान को डर नहीं रहता। कभी कभार कहते हैं कि बुराई वहां जाके करो जहां कोई आपको देख ना रहा हो, कोई भी ना देखे वहां बुराई करो जाके, करनी ही है तो वहां करो जहां आपको कोई देखे ना, लेकिन रब तो हर जगह मौजूद होता है ना, तो फिर कहां जाके आप बुराई करेंगे। रब तो हर जगह आपको देखता है, हर जगह मौजूद है, आपकी शारग से करीब आपको, आपके दिल में जो ख्याल आता है वो ख्याल आने से पहले रब को पता होता है, आपके मांगने से पहले रब को पता होता है कि आप क्या मांगने वाले हैं। तो कोशिश किया करें कभी कभी किसी की बददुआ का, किसी की आह की वजह ना बने, वो आह भी रब सुन लेता है जो किसी के दिल से अभी निकली नहीं। तो जनाब बहुत सारे दोस्त मेरे जो मुझे टिकटॉक पे या बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करते हैं वो गाहे बगाहे कहते हैं, वो बेचारे चिढ़ते भी हैं कि जनाब आपके फेक अकाउंट्स से हमें टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं या परेशानी होती है। तो जनाब आवाज़ की दुनिया में या कोई आपको चार बंदे जब जानने लगते हैं तो उसकी एक बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, इज्जत भी मिलती है, नाम भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, दुआएं भी मिलती हैं, लेकिन उसके कुछ वो कहते हैं ना मुज़र असरात, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं हर अच्छी चीज़ के। कोई भी दवाई जिससे आपका इलाज होता है उसके साइड इफेक्ट तो होते हैं, आराम तो आता है लेकिन हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप समझदार हैं, जो काम हम आपके लिए करते हैं खुदा के, खुदा की मखलूक को राज़ी करने के लिए करते हैं इस बहाने से कि खुदा हमसे राज़ी हो जाएगा, आपके दिलों को खुश करने की कोशिश करते हैं ये सोच के कि रब दिलों में बसता है, अगर आपका दिल खुश हो गया तो रब हमसे खुश हो जाएगा, राज़ी हो जाएगा। तो जना बड़ी परेशानी भी होती है कभी कभी, जो लोग हमें बड़े प्यार से हमारे ऑफिशियल अकाउंट पे मुझे फॉलो करते हैं, प्यार देते हैं, हमारी वीडियोस को सराहते हैं, हमारी बेवकूफियों का इंतज़ार करते हैं, तो जब फेक अकाउंट्स को वो बेचारे फॉलो कर लेते हैं तो फिर उनको बड़ी परेशानी होती है। मैं एक बात इस प्लेटफॉर्म पे ऑन एयर बता दूं,

जनाब ओनर ये बात बता दूं, अपने रेडियो शो में इस वक्त बैठा हूं सनराइज रेडियो पे, और आपका काशिफ आपको बता दे कि सोशल मीडिया पे खासतौर पे टिकटॉक पे जितने भी मेरे फेक अकाउंट्स हैं उनमें से कभी भी आपको मैसेज आए किसी भी किस्म का तो प्लीज रिस्पॉन्स ना किया करें, ना फॉलो किया करें। अगर किसी भी अकाउंट को, मेरे या किसी और के भी अकाउंट को जिनको आप पसंद करते हैं, तो काइंडली ये ज़रूर थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें कि जिस बंदे को आप फॉलो कर लें या करने वाले हैं वो आप उनका ऑफिशियल अकाउंट है, प्रॉपर अकाउंट है, फेक अकाउंट ना हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी आपको DM या मैसेज नहीं करूंगा। पहले किसी भी अकाउंट से अगर आपको मैसेज आता है या कोई डिमांड आती है तो वो फेक अकाउंट होंगे, क्योंकि मैं कभी भी किसी को पर्सनल मैसेजेस पहले नहीं करता, ना करूंगा किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, खासतौर पे टिकटॉक पे। तो जनाब ये क्योंकि मेरे पास मौका था, एक प्लेटफॉर्म था, तो मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारी परेशानी होती है, और इस वजह से हम चाहते थे कि आपके गोश गुजार ये बात की जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात होता क्या है कि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो फिर आपको बहुत सारे दोस्तों की परवाह होती है कि आप, क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत सारे निकल आए हैं,

0: तो जनाब बिल्कुल ये बात आपको बता दूं कि आजकल बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, आप खुद समझदार हैं, फेक अकाउंट्स जितने भी होते हैं सिर्फ बच के रहिएगा, क्योंकि जब आप को दो चार लोग जानते हैं तो फिर कुछ लोग आपको जहां दुआ देते हैं, प्यार देते हैं, वहां पे कुछ लोग दोस्त होते हैं। एक बीमारी होती है उसको कहते हैं हसद की, जेलसी की। अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारी से बचाए। कुछ लोग परवाह नहीं करते हैं, रब का खौफ नहीं होता है, वो दूसरों के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। तो इसलिए जनाब मैं नहीं चाहता, हमारी परेशानी तो रब आसानियां पैदा करेगा आपकी दुआओं से, हमारी नीयत के मुताबिक, मगर हम नहीं चाहते कि जो दोस्त हमें फॉलो करते हैं उनके लिए कोई परेशानी बने। तो प्लीज़ किसी को भी या हमको भी जब फॉलो करते हैं तो ये देख लिया करें कि मेक श्योर किया करें कि फेक अकाउंट्स तो कहीं आप फॉलो नहीं कर रहे। थैंक यू जनाब, ये हो गई बात बड़े काम की। अब आपको एक ब्रेक और वापस ट्रैक पे आएंगे, क्योंकि ये बात हमने आपको रटा दी है और मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके लिए किसी किस्म की भी कोई परेशानी बने। जी जनाब एक ब्रेक है और गाने हम क्यों कर रहे हैं साथ साथ में, और जनाब बिल्कुल एक अपनी सी महफिल है, अपने दोस्तों की, अपने बहन भाइयों की, और आप सब हमारी फैमिली हैं, तो जो दिल की बात होती है वो करनी पड़ती है कभी कभार, और जो भी जहां भी जिसके लिए भी कोई बात होगी वो हम ज़रूर करेंगे। किसी के काम की बात हो तो सब कुछ रोक के, गाने, गपशप, हंसी मजाक, सब कुछ रोक के जनाब पहले आपके लिए काम की बात करेंगे जो आपके काम आ सके। एक और काम की बात है, इफ यू आर स्ट्रीमिंग ऑन टिकटॉक लाइव और थिंकिंग अबाउट गेटिंग स्टार्टेड, जॉइन द सनराइज क्रिएटर नेटवर्क, आर यू के टिकटॉक लाइव एजेंसी हेल्पिंग क्रिएटर्स ग्रो देयर ऑडियंस, डेवलप देयर ब्रांड एंड गेट प्रमोटेड ऑन सनराइज रेडियो। टू फाइंड आउट मोर एंड अप्लाई विजिट द सनराइज क्रिएटर नेटवर्क पेज एट www.sunrise.radio, दैट्स www.sunrise.radio। तो जनाब एक ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा से अपने ट्रैक पे वापस आते हैं और फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, हंसी मजाक और जी गपशप को।
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दैट्स ब्रेडफोर्ड 7230303।
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
0: जी जनाब ब्रेक के बाद हाजिर, खिदमत आपके लिए एक बार फिर से, और बहुत ही जबरदस्ती गपशप चल रही थी हमारी, और जितने भी दोस्त हमें सुन रहे हैं आपके लिए ये खूबसूरत सा गीत होगा, और हीरा आप के लिए खास तौर पे ये गीत होगा। आपने कहा आप जब मैंगोस खाती हैं तो बीमार हो जाती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ज्यादा मैंगोस खा नहीं सकती हैं और आपको पसंद बहुत है मैंगोस। आप कहती हैं अम्मी अबू बड़े नाराज होते हैं, कहते हैं ज्यादा मैंगोस खाओगी तो बीमार हो जाओगी फिर से। अच्छा अम्मी अबू की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, हमारे साथ भी बड़ी प्रॉब्लम रही है ये, खुद मजे ले लेके खाते हैं। अच्छा खुद बीमार होंगे ना खाने पीने से तो कहेंगे वो जी मौसम की तब्दीली है ना। अच्छा हम खाएंगे या हम बीमार होंगे तो कहेंगे हाँ और खाओ अंब, और खाओ पकोड़े समोसे।
4: ए सोनी है, ए सोनी है।
0: जब हम बीमार होते हैं तो खाने पीने को इल्जाम देते हैं हमारे पेरेंट्स. अच्छा खुद बीमार होंगे तो बड़े मजे से, हाँ जी मौसम की तब्दीली है ना, अगर हवा ठंडी लग गई है. अच्छा याद आ गया जी, वाजिद भाई आपकी खबर लेनी थी हमने, आपने हमारी सादगी पे उंगलियां उठाई हैं.

अब आपको यकीन आ जाएगा, आज के बाद आप हमारी सादगी पे शक नहीं करेंगे। हमें तो स्कूल से बड़ी मार पड़ती थी एवं ही। मुझे याद है एक बार हमारी टीचर आई और वो ब्लैक बोर्ड पे किसी ने, वो पता है ना बंदे बच्चे शरारत में नाम लिखते हैं, तरह तरह की चीज़ें लिखते हैं, तरह तरह की शरारतें करते हैं, तरह तरह की बिल्लियों की और बागड़ बिल्लों की और पता नहीं अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं और फिर टीचर सुन ले और फिर वो आके डांटती हैं। टीचर्स मोस्टली ख्वातीन गुस्से की तेज़ होती हैं, तो वो जो मिस थी ना उस क्लास में आई और उन्होंने एक बार, मुझे याद है, उन्होंने बड़े गुस्से से कहा, तुम सब में से कौन है बेवकूफ? कौन है बेवकूफ? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ, पता है आपको, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। फिर मैं खड़ा हो गया, दाएं बाएं देखा, कोई खड़ा नहीं हो रहा। टीचर हमारी गुस्से में लाल पीली हो रही थी, बस एक ही बात कह रही थी, जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। फिर मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा, कोई भी नहीं खड़ा हो रहा, मैं ही खड़ा हो जाता हूं। तो टीचर ने कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? तो मैंने कहा, नहीं मिस, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैंने सोचा आप अकेली खड़ी हैं तो इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। और इसके अलावा आपको पता है बचपन में जनाब हम बॉडी स्प्रे, जी जी बॉडी स्प्रे, वाजिद भाई हूँ दसो कौन सादा है, ये तो कोई एक किस्सा नहीं है ना। बॉडी स्प्रे हमें पता ही नहीं होता था कि बॉडी पे लगाते हैं। आपने कभी ऐसा किया? कुछ याद आया? याद आया ना? मुझे पता है आप मानेंगे नहीं, नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेगा, सिर्फ काशिफ ही मानेगा। हमें नहीं पता होता था बॉडी स्प्रे बॉडी पे लगाते हैं। हम जनाब कपड़ों के ऊपर लगा लिया करते थे ये सोच के कि स्प्रे स्प्रे ही होता है। और खुशबू आनी चाहिए जी, कसम में रब गवाह, हमें नहीं पता होता था कि जनाब ये कपड़ों पे नहीं लगाते हैं, बल्कि कई बार तो निशान पड़ जाते थे कपड़ों पे ना, क्योंकि बॉडी स्प्रे अगर आप कपड़ों पे लगाएंगे, खास तौर पे वो भी काले कपड़ों पे या शर्ट पे नीली गाढ़े कलर के, तो वो तो अपने निशान छोड़ देगा ना। बॉडी स्प्रे बॉडी के लिए होता है, कपड़ों पे लगाने के लिए नहीं होता है। ये आपके काशिफ को नहीं पता था, ये अभी पिछले दिनों में मुझे पता लगा।

0: करके हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच खारियां वाले हो, कमाल है आप। बर्मिंघम वालों, कुमार सानू जी के गाने लगा तो रहे हैं, कितने गाने लगाए हैं, चले जनाब कोशिश करेंगे और भी लगाएं, लेकिन अभी कुछ माहौल को चेंज करेंगे, एकदम से आपको झटका ना दें, आपको आपके दिल को एकदम से चोट ना पहुंचे, इसलिए हम जुदाइयों की व छोड़ों की बातें शुरू करते हैं। अभी गीत कुछ इस तरह के लगाएंगे, प्यारे प्यारे से आपसे दूर जाने वाले, और ताकि एकदम से आपको कहीं वो गम ही ना लग जाए ना हमारी जुदाई का, तो अपने आप को भी थोड़ा सा तैयार करते हैं आपसे जुदाई के लिए, और आपको भी आपका भी जहन बनाते हैं हमारी जो जुदाई आ रही है आधे घंटे तक तकरीबन, तो उसके बारे में अब गीत होंगे, कुछ मज़े मज़े के होंगे लेकिन आपकी तरह के। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, खूबसूरत गीतों का सिलसिला और बातों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा आपके संग संग।
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust. Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770-6923.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow. Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow. Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow. Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow. Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow. Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow. Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead.

बर्मिंगम वालों, आपके लिए खास तौर पे इस उम्मीद पे कि अभी आपका दिल हमसे राजी हो जाएगा, कुमार सानू जी का गाना जाने से पहले, और सभी सुनने वालों के लिए और जिन्होंने कॉल्स की, आप सबके नाम

आपने खुदा हाफिज कहने के लिए कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। रऊफ हाशमी जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी कॉल की जनाब, दोबारा से बार बार कॉल की जनाब, अपने दिल की बातें की, थोड़ी बहुत थोड़े से टाइम में जितनी आप कर सकते थे, बहुत बहुत शुक्रिया।

जनाब, हम आपसे इस गीत के बाद इजाजत तो लेंगे, लेकिन पहले कुछ बातें होती हैं। जी हाँ, दिल की बातें उनको कहता हूँ और फिर हम आपको कुछ चंद एक गीत बैक टू बैक सुनवाते हैं, क्योंकि आपने हमारी इतनी सारी बातें सुनी होती हैं तो हमारा दिल करता है कि हम आपको कुछ गीत भी जाने से पहले लगातार 3-4 गीत बिल्कुल चलाएं, ताकि जो गीतों के शौकीन हैं उनकी तसल्ली हो जाए, है ना। हर किसी को तो हमारी बातें अच्छी नहीं लगती ना। हर किसी को सिर्फ गीत भी अच्छे नहीं लगते। और जाने से पहले दोबारा जनाब आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म किसी पे भी अगर मेरे किसी भी अकाउंट से आपको मैसेज आता है या डीएम आता है, पर्सनल मैसेज आपके इनबॉक्स में, तो वो मैं नहीं हो सकता, वो फेक अकाउंट्स होंगे, चाहे टिकटॉक है या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत सारे मेरे नाम से फेक अकाउंट्स बने हैं, बनाते हैं दोस्त, पता नहीं क्यों बनाते हैं, रब का खौफ नहीं होता या दूसरों को परेशान करके उनको अच्छा लगता है। हम तो यही कहेंगे, उनके हक में दुआ करेंगे, रब उनको हदायत दे, उनके लिए आसानियां पैदा करे, उनके दिल को खूबसूरत सा एक बाग बना दे जिसमें अच्छे अच्छे ख्याल आए, अच्छी अच्छी बातें आए, इंसानों के लिए आसानियों का बायस बने वो भी, और जैसे हम भी कोशिश करते हैं। हमेशा ये कहता हूँ अपने शो के आखिर में कि दूसरों के लिए आप रब को राज़ी रखने का एक ये भी तरीका है, आप सजदे करें, दुआएं करें, चैरिटीज करें, तस्बीहात करें, लेकिन रब को राज़ी करने का अपनी ज़िंदगी में अगर मौजज़े देखना चाहते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात मैं कर रहा हूँ कि आप दूसरों के लिए मुश्किलात कभी ना खड़ी करें, दूसरों की ज़िंदगियों में कांटे कभी ना लाएं, तकलीफ़ों का बायस ना बने, दूसरों की ज़िंदगियों में कोशिश कीजिएगा कि आप आसानियों का बायस बने, वजह बने दूसरों की ज़िंदगियों में राहत, सुकून और आसानियां बांटने की वजह बने। अगर कुछ कर सकते हैं तो दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, मुश्किलात, तकलीफ, परेशानियाँ इसकी वजह ना बने। रब की मखलूक को अगर आप नाराज करेंगे, मुश्किलात खड़ी करेंगे, तो आप रब से जंग का ऐलान कर रहे हैं, खुलेआम रब को नाराज कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि दूसरों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करूं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। इसी कोशिश को लेकर यहां पर भी आता हूं 3 घंटों के लिए आपके पास। कोशिश में कहां तक अपनी नीयत के मुताबिक कामयाब रहता हूं, आपसे कुछ नहीं सिवाय दुआओं के चाहिए, मेरा रब उसके मुताबिक, मेरी नीयत के मुताबिक, मेरी कोशिश के मुताबिक मुझे उसका अजर देगा। और आपको जिस नीयत से, जिस प्यार से आप मेरा हौसला बने, शामिल हुए, टाइम दिया, रब आपको उसका अजर दे, मेरा हौसला बढ़ाने का रब आपको अजर दे। घड़ियान पहुंची जुदाइयों की, वो छोड़ों की, आपसे दूर जाके आपके पास, आपके दिल में रहने की घड़ियान पहुंची, अपनी यादों में, बातों में, चाहतों में, और जनाब सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा। अगली मुलाकात बशर्ते जिंदगानी, बशर्ते सेहत आपके साथ एक बार फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा, आपका और मेरा, मेरा और आपका, अल्लाह निगहबान।

0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
5: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

0: अफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: जुतियां भी कसी गई पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: The day never moves slow.

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692 3788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपरस्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 0127446446।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: bringing you the hottest sounds. Let's go.
1: On Sunrise Radio.
2: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
3: Salam and namaste. Salam and namaste.
4: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा हुए
5: खान।
6: हम शरीफ क्या हुए
7: मैं वापस
6: पूरी दुनिया ही बदमाश
7: हूँ
8: देखो मैं हूँ कहाँ
0: खान।

0: अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, श्रीकाल, खुश आमदीद, वेलकम टू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, आपका होस्ट दोस्त यहाँ भी हाजिर है। मेरा नंबर वैसे आम ही है थिल अलम कबीर विशाम और आप सबके नाम रंग महफिल का प्रोग्राम है। टुडे इज अमेजिंग डे एज यू नो, टुडे इज अ संडे इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल, एंड यू आर लॉक्ड इन विद द स्टेशन सनराइज रेडियो 100.6 एफएम, 103.2 एफएम अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर, डीएबी प्लस ब्रैडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीज, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है मिल्टन कीन में। नॉट फॉरगेटिंग, वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी सून यू विल बी लिसनिंग टू डीएबी प्लस इन डार्बी और वाजीवा। नॉट फॉरगेटिंग, यू कैन डाउनलोड द सुनर एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर, एंड नॉट फॉरगेटिंग www.sunriseradio.fm, एंड दैट इज www.sunrise.radio. That is all about, and yes, it's definitely Sunday evening, and the weather has been such a nice and lovely, lovely romantic. Mostly, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं? What is your beautiful plan for this beautiful evening? And today is the 5th of July, 2026. And yes, and if you wanna give me a flash, if you wanna give me call 01274306666 लाइन यहाँ पे चमक रही हैं, दमक रही हैं, और आज हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। वाह वाह वाह वाह वाह, यहाँ पे इतने खूबसूरत है, फ्लशेज आ चुकी हैं, वाह वाह वाह वाह, हमारे कहते हैं ना कि हमारी बहार आ गई है, और क्या कहने जी, क्या कहने, क्या कहने जी, आप आए और बहार आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, यहाँ पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर आप सब दोस्तों के लिए, और वाह वाह वाह वाह, एक से बढ़कर एक कॉलर हमारा साथ दे रहे हैं, और हमारी वड्डी सी फैमिली को जी कहना है, खुश आमदीद कहना है, सद बिस्मिल्ला कहना है, वाह हा हा, सदके जावा सदके जावा, यहाँ पे खूबसूरत फ्लशेज आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैं आपका नाम लूँगा, आप फ्लश करते रहें यहाँ पे, और यहाँ पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर। और इफ़ यू ड्राइविंग एंड ड्राइव विद केयर, इफ इन आउट अबाउट, मेक श्योर स्टिक अराउंड विद सुनराइज रेडियो, और यस, इफ़ यू आर इन द पार्क, यू आर ट्यून इन टू सुनराइज रेडियो 103.2 एफएम, और यहाँ पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर, एंजॉय द ट्रैक।
1: सनराइज रेडियो, हिट आफ्टर हिट, द हिट्स ऑफ टुडे एंड द हिट्स ऑफ टुमारो, सनराइज रेडियो, हिट ऑफ द आवर।

0: Right, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया. That was the hit of the hour और यहाँ भी हमने करना है time check.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, the time in the studio is 14 minutes past the 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी. ब्रेक के फौरन बाद I will mention you all your names, जो खूबसूरत नाम जो आ चुके हैं, जो नेम आ चुके हैं, जो खूबसूरत आपके जो चेहरे मुबारक यहाँ पे फ्लश हो रहे हैं, तो उनको भी हम वेलकम कहेंगे, जी आई कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सद बिस्मिल्लाह कहेंगे. और आप आए और बहार आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. थैंक यू वेरी मच. लाइनें चमक रही हैं, दमक रही हैं और काफ़ी यहाँ पे रौनक लग चुकी है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों की, क्योंकि आप हमारे लिए टाइम निकाल के फ़ोन करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं. थैंक यू वेरी मच आप सबका भी. और आप आए और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद मैं नाम मेंशन करूँगा सब दोस्तों को जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कर चुके हैं और आने वाले भी हैं, जो आ चुके हैं उनका भी हम सलाम पेश करते हैं और आदाब और वेलकम जी एनु खुश आमदीद आप सबके लिए.
2: शुरूठे नई मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है.
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ. उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे.
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने. नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446.
0: राइट, वेलकम बैक लिसनिंग. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जिन्होंने हमें याद करें. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी और हमें अच्छा लगा जो हमें याद कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और आज सबसे पहले को जो आज आई, हाय हाय हाय हाय, सदके सदके वेलकम जी आनो खुश आमदीद, मेरा सोना दे मनमोना आ गया एफ रहमान साहब. माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने पिछले हफ्ते भी फ़ोन किया, माशाल्लाह उजरा अफजाई की है, दुआएँ दी हमें और हमें क्या चाहिए. और ये हमारे सन रेडी की शान और बान आन है और क्या कहने, हमारी प्रोग्राम की रौनक है और क्या कहने जी, क्या कहने. एफ रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दिल गार्डन गार्डन का दिल बाग बाग हो गया. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आपने हमें याद रखा माशाल्लाह और बड़ा ही हमने भी आपको मिस किया मेरे भाई. और सब सुनने वाले हमेशा ही आपका नाम ले रहे हैं माशाल्लाह, हमेशा ही आपको सलाम पेश करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें याद किया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. देन वी गो लवली कॉल फ्रॉम हमारे शुएब भाई हैं, राजा शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया, बहुत अच्छा लगा, आपने भी हमें याद कर रहे हैं और कीमती वक्त हमें दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अतिका साहिब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमें याद कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, उजरा अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया है. अयूब जवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया. मदरसा कैनी साहब हैं, आपने हमें याद किया. वाजिद भाई हैं फ्रॉम हॉडिसविल, आपने हमें याद किया. सिमी जी हैं और उनकी पूरी फैमिली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा. फ़जाना जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद किया है. शाहपुर जी हैं, जलेखा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद कर रहे हैं. ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है. और वाजिद भाई आप भी हमें याद कर रहे हैं और आपसे भी हम कलाम होंगे थोड़ी देर के बाद. और यहाँ भी मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, वो भी हमें याद कर रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, वो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. ये एक बड़ी खूबसूरती है कि आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं, इन्जॉय करते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. एक वड्डी सी फैमिली है माशाल्लाह और मेरे अपने आ रहे हैं, मेरे सज्जन आ रहे हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये वो गीत हमें पेश कर रहे हैं जो सब दोस्तों के लिए होगा. और गिदन भाई और हमारे पापी जी सुमित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिटन किन से याद करते हैं, औजरा अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया. आपके लिए और आपकी जो सखियाँ सहेलियाँ हैं उनके लिए गीतों का, मुझे उम्मीद है यकीन के आप इंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. नदीम मरसूल साहब हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी.

राइट, दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून और आपने एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फरजाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें याद किया, थैंक यू वेरी मच। आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप एंजॉय करेंगे। अयूब जौहान साहब ने याद किया है हमें और आपने सब दोस्तों को जो सुनने वाले को सलाम पेश किया है, तो मैं कह रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफरमान साहब, ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, आपके जो दोस्त हैं उनके लिए गीत होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। अफरमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। पहली कॉलर आज थी हमारी, हमारे अफरमान साहब ने, उन्होंने पहले जब से मैं प्रोग्राम शुरू किया 8 बजे तो उन्होंने मुझे याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया अफरमान साहब। ये पूरा प्रोग्राम मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। एंड देन वी हैड अ लवली कॉल फ्रॉम डॉक्टर मलिक साहब आपके लिए और हम सलाम पेश करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया दुआएं दी हैं और पिछला जो प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह और वेंसडे के रोज़ आपने पसंद किया, इंजॉय किया, सब आपने शुक्रिया अदा किया, जो भी ऑन एयर आए ऑफ एयर आए उन्होंने आपने उनको शुक्रिया अदा करें, दिल से शुक्रिया अदा करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, द फीडबैक हैज़ बीन वंडरफुल वंडरफुल। अफरमान साहब ये गीत आपके लिए, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करके, एंजॉय द ट्रैक।

0: कभी याद कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और थोड़ी देर के बाद आपके साथ भी हम कलाम होंगे और आपने कहीं पे जाना नहीं है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक होगी और ब्रेक के फौरन बाद गीत आने वाला है। और मदरसा कियानी साहब आपके लिए भी गीत आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपको जो फेवरेट गीत है वो भी पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे। और थोड़ी देर के बाद आपके दोस्तों का भी नाम लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
3: Official media partner Sunrise Radio.
4: कोई परोंठे शुरू थे नई मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है
5: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
4: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
5: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड Telephone 012744-64446.
0: राइट वेलकम बाकी लिसनिंग और लिसनिंग सुन रेडियो और यहाँ पे ये गीत आने वाला है। और राजेश वे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ये गीत आपकी तरफ से होगा। हमारे चौधरी फरियाज साहब हैं गिदन भाई हैं हमारे पावी जान सुमित्रा जी हैं अतिकर साहब हैं उनके लिए गीत होगा डॉक्टर मलिक साहब हैं उनके लिए गीत होगा और अब्दुल कयूम फ्राइजिंग और से उनके लिए गीत होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि वो पसंद करेंगे। शकील साहब हैं उनके लिए भी गीत होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि वो भी इंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच। और यही गीत मैं पेश करूँगा मदरसा कियानी साहब आपके लिए और चौधरी फैसल साहब हैं ये गीत आपके लिए चौधरी आसफ साहब हैं राजा नबील नबील हैं उनके लिए होगा चौधरी यासीन साहब हैं जंगीर साहब हैं और चौधरी फरियाज साहब हैं और उनके लिए गीत होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। और यही गीत मैं पेश करूंगा एफ रहमान साहब आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए नाम होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ही इंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारा साथ देने वाजिद भाई आपके लिए और आपके दोस्तों के नाम होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। और अतिकर साहब आपके लिए और आपकी सखी सहेली के लिए होगा मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने हमें याद किया नदीम मंसूर साहब आपके लिए भी होगा। इंजॉय द चेक।

Right, and that was definitely one of my favorite tune, और आपने enjoy किया और ये सुन के दिल garden garden दिल बाग बाग हो गया. Moving on to another hit after hit, और ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ रेखा जी आपके लिए और आपकी सखी सहेली के लिए होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप enjoy करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मिस्टर पटेल, आपने हमें याद किया वोसल से, बर्मिंघम से. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप enjoy करेंगे. और सोनी जी ये गीत आपके लिए गा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ही enjoy करें. मेरी प्यारी बहना है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी. और ये वो गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ. आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल वंडरफुल ट्यून. और सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद किया और आप प्रोग्राम को पसंद करें एंजॉय करें और ये सुन के बड़ा ही अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये गीत मैं आपके लिए पेश करना जा, आपकी सखी सहेली के लिए पेश कर रहा हूँ. और ये वो खूबसूरत गीत है, एंजॉय द ट्रैक.

That was a mind-blowing track और आपने enjoy किया। ज़रीना जी हमारी प्यारी बहना है, ये गीत आपके लिए। अगर मुझे उम्मीद है यकीन कि आप enjoy करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम पसंद करने का, enjoy करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और नदीम मंसूर का ये गीत आपके लिए भी होगा और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ही enjoy करेंगे। और अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये गीत आपके लिए गया। आई होप यू गोना एंजॉय द वंडरफुल ट्यून एज वेल। और शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये गीत आपके लिए और आपके दोस्तों के नाम होगा। और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप enjoy करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून, एंजॉय। और बहुत अच्छा लगा, एक कॉल आई है और उन्होंने कहा कि आप बड़े अच्छे गीत पेश करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया फजाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू वेरी मच, यू हैव कॉल मी फ्रॉम हैलिफैक्स। आपने गानों को पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, और समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, यू नो, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू प्ले समथिंग डिफरेंट फॉर यू दैट यू गोना एंजॉय, एंड आई एम गोना सर्टेनली गोना एंजॉय एज वेल। और थोड़े जी हट के गीत होते हैं और हमेशा यहाँ मैं पेश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि थोड़े जी हट के गीत होने चाहिए। और ये वो गीत है, एंजल ट्रैक है।

Right, that was a beautiful tune, something different, something unique, all this gold, aur main shamil kehta hoon, bahut bahut shukriya aapka bhi. Moving on to another beautiful track, this track will take me to the 9 o'clock news, and this track is gonna go out to all those beautiful, beautiful callers jinhone mera saath diya, aur zaraf zai ki hain, duaen di hain, aur hame kya chahiye, and this track is gonna go out to Shweb bhai, ye geet aapke liye hoga, aur F. Rehman sahab geet aapke liye hoga, Atika sahab hain, aapke liye bhi hoga, aur गिदन भाई हैं, हमारे पापी जान सुमित्रा जी हैं, अयूब जवान साहब हैं, मुदस्सर कियानी साहब हैं, वाजिद भाई हैं, एफ रहमान साहब हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नदीम मंसूर साहब हैं, रेखा जी हैं, और जरीना जी हैं, ये गीत आपके लिए, डॉक्टर मलिक साहब हैं, ये गीत आपके लिए, और शुएब भाई आपके लिए, और आपके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे, और सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, फजाना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और अतीका साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और यहाँ पर यह गीत पेश करना है दिस ट्रक विल टेक मी to the 9 o'clock news, aur kya geet hai, zabardast geet hai, aur one of my favorite tune, aur aap is geet ko enjoy karenge, and definitely enjoy karenge, kyunki wow, what a tune, what a heavy tune, enjoy the track.

0: राइट लेडी एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल, और यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला होगा आपसे लेके 11 तक, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं अतीका साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह वेलकम जी, अनु खुश आमदीद, ठीक है ठीक है आपकी
1: जी? सब अल्लाह का शुक्र
0: है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: सब सब ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र, करम करम आपकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं, और आपने हमारे डॉक्टर साहब ने हमें आपको याद किया है, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है जो फर्दे सब कॉलर्स आए लास्ट वीक में प्रोग्राम में, उन्होंने इंजॉय किया माशाल्लाह, फीडबैक उन्हें दिया है कि सब ने एक से बढ़कर एक कॉलर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा जी,
1: बहुत शुक्रिया उनका
0: जी।
1: तो उन सबको सलाम करते हैं।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और सबसे पहले तो आपके जो सॉन्ग थे
0: जी जी,
1: हमेशा की तरह आज भी बहुत ही
0: जी
1: खूबसूरत
0: जी,
1: और बहुत ही सुरीले थे।
0: सुरीले की दफा क्या कहने जी, क्या कहने वाजी, बहुत खूबसूरत।
1: ये महफिल में जब आप आते हैं तो
0: जी
1: खूबसूरत सॉन्गों के साथ
0: कोशिश करता हूँ कि हट के गीत होने चाहिए, थोड़े डिफरेंट गीत होने चाहिए जी,
1: तो बहुत ही अच्छा लगा हमेशा की तरह, बहुत खूबसूरत महफिल जमाई आपने
0: जी,
1: तो आपका बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: तो ये सब आप ही की वजह से जब आप आते हैं
0: जी जी, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शाम की सूरज ढलने के बाद
0: वो कहते हैं ना, जो हमारे शकील साहब हमेशा कहते हैं कि सुनने वाले अच्छे होने चाहिए, और हम तो कोशिश करते हैं कि सुनने वाले अच्छे होने चाहिए।
1: नहीं, सुनने वाले तो सब बच्चे हैं
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: और वो पसंद भी करते हैं, और आपके जब प्रोग्राम में जब शिरकत करते हैं सब
0: जी,
1: तो इससे पता चलता है कि सुनने वाले कितने
0: खूबसूरत हैं, क्या कहने वाजिब है, क्या कहने जबरदस्त,
1: और कैसे वो कान लगा के सुनते हैं ये तो अंदाजा हो जाता होगा
0: जी।
1: तो मेरी सखी सहेलियां हैं
0: जी जी,
1: जी जी, और गिद्दर भाई हैं, वो लास्ट टाइम उन्होंने हमेशा की तरह बहुत
0: बहुत खूबसूरत गीत गुनगुनाए जी, वाकई
1: बहुत ही अच्छा लगा, और वो आज भी आएंगे और इंशाल्लाह खूबसूरत सॉन्ग सुनाएंगे
0: जी,
1: और कोई ना कोई धमाल करते रहते हैं, और
0: धमाका करेंगे आज, वैसे भी खुश हैं और आज तो वैसे धमाका करेंगे डेफिनेटली।
1: उनका मैसेज भी आया था
0: जी जी,
1: हमेशा ही करते हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी जी,
1: वो बताते हैं कि सब तैयार हो जाएं,
0: वाह वाह तैयार हो जल्दी हो जाएं बाजी बा, क्या कहने।
1: तो उनका बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: तो गिदर भाई हैं, नशीन जी हैं, शापली हैं, जुलेखा जी हैं, रेखा जी हैं, सलीना जी हैं, सितारा जी हैं, आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल हैं
0: जी,
1: और चौधरी फयाज साहब हैं, उनको बहुत दुआएं हैं उनके लिए,
0: जी जी,
1: उनकी वाइफ के लिए
0: जी, मुश्किल के लिए जी जी जी जी,
1: लास्ट टाइम भी आपने बताया था
0: जी,
1: तो वो इंशाल्लाह आएंगे हमेशा की तरह खूबसूरत शायरी सुनाएंगे
0: जी।
1: तो जुवेद मीर साहब हैं, नदीम मंसूर साहब हैं, नदीम मंसूर साहब
0: आज हमारा साथ दे रहे हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, वो जो उन्होंने कमी महसूस की है पिछले हफ्ते तो आज तो वो मुकम्मल करेंगे जी
1: इंशाल्लाह, वो जरूर आएंगे, और बड़ी खूबसूरत हमेशा की तरह आज
0: जी
1: खूबसूरत शायर, उनकी सॉन्ग और शायरी भी कभी कभी सुनाते हैं,
0: बड़ी खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत।
1: पापा जी हैं, पापा जी इंशाल्लाह
0: वो उन्होंने कोशिश की है पिछले प्रोग्राम में, कोशिश की थी उन्होंने प्रोग्राम में शिक्र होने की कि वो टाइम खत्म हो गया था ना तो प्रोग्राम का, तो इसलिए फिर वो नहीं आए, तो इंशाल्लाह वो आज आएंगे इंशाल्लाह,
1: आएंगे जरूर
0: जी।
1: शकील जी हैं, वो तो आते ही हैं, और
0: वो तो क्या बात है उनकी, क्या बात है, क्या बात है जबरदस्त,
1: तो महफिल
0: महफिल लूटनी होती है ना, क्या बात है, क्या राय साहब हैं हमारे जी,
1: रावर हुसैन साहब हैं, उनके खूबसूरत जो बातें हैं वो शायरी है बहुत ही खूबसूरत होती है, वो भी उनका भी इंतजार होगा, वो जरूर आएंगे
0: जी।
1: तो अब्दुल कयूम साहब हैं, उनके लिए भी यही है,
0: क्या बात है, क्या बात,
1: खूबसूरत शायरी और सुनाए
0: जी,
1: और वाजिद भाई हैं, और मुदस्सर कियानी साहब हैं,
0: शिजार
1: साहब हैं, एफ़ए रहमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं,
0: वाजिद भाई क्या कहने,
1: जरूर आएंगे, तो उनकी भी खूबसूरत शायरी या सुनेंगे
0: जी।
1: तारिक भट्ट साहब हैं, राना नवीद साहब हैं, आसिफ रियासत साहब हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं
0: जी,
1: राव अज़र हुसैन साहब हैं, सबको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम। और अभी मुझे थोड़ी देर पहले उन्होंने अयूब जवान साहब ने फ़ोन किया था माशाल्लाह, उन्हें सबने उन्होंने सबको सलाम पेश कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम,
1: उनको भी बहुत बहुत सलाम, वो भी कभी कभी शिरकत कर लेते हैं
0: माशाल्लाह जी,
1: बहुत के वो जरूर करेंगे
0: जी,
1: उनको जब टाइम मिलता है जरूर आते हैं
0: जी।
1: तो शायरी है, एक उम्र गुजारी लफ्जों में, एक उम्र तुम्हारी यादों में, अब अपने टूटे हिस्सों को मैं शेर लिखूं या शाम लिखूं।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: एक उम्र गुजारी लफ्जों में, एक उम्र तुम्हारी यादों में, अब अपने टूटे हिस्सों को मैं शेर लिखूं या शाम लिखूं। जो ख्वाब जो आंखों में उतरे, जो वक्त की धूप में बुझते गए, इनकी राख समेट के आखिर मैं दर्द लिखूं या नाम लिखूं।
0: वाह क्या कहने।
1: मैं दर्द लिखूं या नाम लिखूं,
0: वाह।
1: हर मोड़ पे तेरी याद रही, हर राह में तेरा अक्स रहा,
0: वाह।
1: इस दिल के वीरान दरीचे पर,
0: वाह।
1: मैं हिजर लिखूं या जाम लिखूं,
0: वाह जी वाह।
1: इस दिल के वीरान दरीचों पर मैं हिजर लिखूं या जाम लिखूं, जो बात कभी ना कह सकी,
0: वाह।
1: वो आंखों ने ही कह डाली,
0: वाह।
1: अब खामोशी के इस कागज पर,
0: वाह जी वाह।
1: मैं अश्क लिखूं या पैगाम लिखूं, अब खामोशी के इस कागज पर,
0: वाह।
1: मैं अश्क लिखूं या पैगाम लिखूं, एक उम्र गुजारी लफ्जों में,
0: वाह वाह।
1: एक उम्र तुम्हारी यादों में,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: अपने टूटे हिस्सों को मैं शेर लिखूं या शाम लिखूं,
0: वाह।
1: कुछ वक्त मिला तो बैठेंगे, कुछ दिल की बातें छेड़ेंगे,
0: वाह।
1: कुछ अपने दिल के मौसम की, कुछ तन्हाई के आलम की, कुछ रातों की, कुछ शामों की, कुछ कलियों की, कुछ गलियों की,
0: वाह।
1: कुछ जान से प्यारे लोगों की,
0: वाह।
1: कुछ इनकी प्यारी यादों की, कुछ वक्त मिला तो बैठेंगे,
0: वाह।
1: हम एक दूजे को देखेंगे,
0: वाह।
1: हम एक दूजे से पूछेंगे, कब कैसे किससे इश्क हुआ,
0: वाह।
1: कब कैसे ये उस्ताद पड़ी, कब कैसे गुजरे वसल के दिन,
0: वाह।
1: और कैसे गुजरी हिजर की घड़ी, किस बात पे किससे रूठे हम, किस बात पे किससे रूठे तुम,
0: वाह।
1: किस बात से किसने बहलाया,
0: वाह।
1: किस बात पे बार बड़ी आखिर,
0: वाह।
1: किस बात को कैसे समझाया, कुछ वक्त मिला तो बैठेंगे,
0: बहुत खूब।
1: कुछ दिल की बातें छेड़ेंगे, जो मिल ना सका तो क्यों ना मिला,
0: वाह।
1: और मिल भी गया तो खोया क्यों,
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: जब दिल हंसने का आदि था, जब दिल हंसने का आदि था,
0: वाह।
1: फिर किस बात पे रोया क्यों, जब इश्क सफीना हाथ में था,
0: वाह।
1: दरिया ने इसे डुबोया क्यों,
0: वाह जी वाह।
1: फिर हम दोनों कुछ ख्वाब लिए, जब दिल हंसने का आदि था, तो फिर किस बात पे रोया क्यों, जब इश्क सफीना हाथ में था,
0: वाह।
1: दरिया ने इसे डुबोया क्यों,
0: बहुत खूब।
1: फिर हम दोनों कुछ ख्वाब लिए, ताबीरें नहीं समेटेंगे,
0: वाह।
1: कुछ वक्त मिला तो बैठेंगे,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: कुछ गुजरी यादें छेड़ेंगे, कुछ वस्त्र के लम्हे पाएंगे, ख्वाबों के दीप जलाएंगे,
0: वाह।
1: हम हुसन को दोस्त बनाएंगे,
0: बहुत खूब।
1: और फिर हसीन हो जाएंगे,
0: वाह जी वाह।
1: और जहम हुसन में आकर हम फिर एक दूजे से रूठेंगे,
0: बहुत खूब।
1: तुम हमको यकजा कर लेना,
0: वाह।
1: तुम हमको यकजा कर लेना, जब किरची किरची बिखरेंगे,
0: बहुत खूब।
1: कुछ वक्त मिला तो बैठेंगे,
0: वाह।
1: कुछ दिल की बातें छेड़ेंगे,
0: वाह।
1: हवाएं पूछती फिरती पता मेरे ठिकाने का, जनों तारी है उनपे अब दिया मेरा बुझाने का,
0: बहुत खूब।
1: गमे जाना भी है हमको, गमे दोरा भी रखते हैं,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: हमें कितना सलीका है गमों से दिल लगाने का,
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: हमें कितना सलीका है गमों से दिल लगाने का,
0: वाह।
1: वो एक नामा पुराना जिसमें लिखा था कि मेरे हो, यूं है संभाल के रखा के नक्शा हो खजाने का, बुझी आंखें रुकी सांसें, है दिल भी डूब जाने को, भला ये क्या तरीका है किसी का याद आने का,
0: बहुत खूब।
1: बदल लेती है एक पल में नजर, लहजे जुबां मतलब नया जैसे ही मिल जाए, खत्म किस्सा पुराने का।
0: क्या कहने, वाह।
1: अभी तक पूछते हैं वापसी के रास्ते हम, रास्ते हमसे हमेशा दूरियां हैं क्यों नतीजा पास आने का।
0: बहुत खूब।
1: जो हंस कर आईना देखो तो अपना अक्स खुद बोले, तरीका भूल बैठा हूँ मैं साहिब मुस्कुराने का।
0: वाह।
1: जो हंस कर आईना देखो तो अपना अक्स खुद बोले, तरीका भूल बैठा हूँ मैं साहिब मुस्कुराने का।
0: वाह जी वाह।
1: न जाने कब गिरी बिजली, न जाने कब जला मस्कन, बहुत प्यारा दिया था हमने तो इस आशियाने का।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: हवाएं पूछती फिरती पता मेरे ठिकाने का।
0: वाजिबा।
1: जनू तारी है इन पे अब दिया मेरा बुझाने का।
0: वाजिबा।
1: तो थोड़ा सा सॉन्ग है जो कि आप इजाजत दें।
0: जी जी जी जी जी।
1: गिदर भाई हमेशा
0: की। जी जी जी जी गो अहेड। जी जी जी।
1: 2003 में मैंने सुनाया था
0: जी,
1: तो अब 2026 हो गया है।
0: जी गो अहेड।
1: आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवान है।
0: बहुत खूब।

0: है
1: वाह,
0: दुनिया मेरी जवां है
1: वाह,
0: आवाज दे कहाँ है
1: वाह,
0: बारात जा रही है यूं जैसे चांदनी की, बारात जा रही है
1: बहुत खूब।

0: है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहां। बस इतना ही था।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, कमाल कर दिए, बड़ी खूबसूरत गीत का आपने गुनगुनाया, और बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। राइट, वट वॉज, बहुत बहुत शुक्रिया टिकट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मौजूद मेहमान हैं, हमारे मोहतरम, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। नदीम मंसूर साहब हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे तबीयत है मेरे भाई? ठीक ठाक से ठीक है आपकी?
2: माशाल्लाह
1: माशाल्लाह, ये खुशी हुई कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं, और हमने आपको मिस किया, बड़ा ही मिस किया आपको पिछले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आपके लिए। जी
2: चलिए, शबीर कुमार साहब का गीत है।
1: जी जी,
2: तुमने दिया आवाज।
1: हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, वाह।
2: तो उसकी कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, गो अहेड।
2: प्रेमी हूँ,
1: हाय हाय हाय, क्या कहने,
2: पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं,
1: वाह क्या कहने,
2: पागल हूँ मैं। रूप का आंचल हूँ मैं,
1: वाह
2: आंचल हूँ मैं,
1: वाह
2: चल हूँ मैं। प्यार का बादल हूँ मैं,
1: वाह

0: उम्र ही ऐसी है कुछ ये, तुम किसी से पूछ लो।
1: वाह वाह वाह।
0: हाय, उम्र ही ऐसी है कुछ ये,

0: Hi, hi, hi. क्या कह रहे मेरे भाई, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया, वन ऑफ माय फेवरेट गीत, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का. और क्या गीत आपने गुनगुनाया, जबरदस्त, ब्यूटीफुल. और आपकी जो गैर हाजिरी लगी है उसमें हम एक गाना सुनेंगे नेक आवर में भी जब आपको टाइम मिला. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. और ये थे हमारे मोहतरम नदीम मंसूर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं. और छोटी सी ब्रेक है, और एक दो मिनट की, वेल 30 सेकेंड की ब्रेक है. कीप इलेक्ट्रिसिटी सनराइज रेडियो.
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
3: Official media partner, Sunrise Radio. Sunrise
0: Music. वेलकम बैक लिसनर रेडियो. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है. और ये हैं हमारे गिदन भाई हैं, हमारे गुरु जी हैं. वेलकम जी अनु, खुश आमदीद. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं तो ठीक था, फर्स्ट क्लास, ए वन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड,
4: एकदम नंबर वन पे. आज रात को देखेंगे क्या होता है.
0: हाँ हाँ, आज रात को हम इंतजार में हैं. आज रात को पूरी रात हम फुटबॉल देखेंगे 1 बजे से. आहा, क्या कहने, क्या कहने. और आई कांट वेट, उसका इंतजार में हूँ कि वो शुरू होगा, मैच शुरू होगा. आज जो ना वो कहते हैं कि आज रात नौजवान है.
4: जी
0: जी,
4: तो आज तो अतिका जी ने तो कुछ गाना बहुत अच्छा गुनगुना लिया.
0: बहुत खूबसूरत गाना था. जी जी,
4: आज तो दिन हमारा एकदम अच्छा हो गया.
0: आवाज क्या कहने, वाह.
4: तो सबसे पहले हमारा शकील भाई गोनली वाला.
0: जी जी,
4: जवीर मेर भाई, मोहम्मद अनीफ भाई है, राजीव भाई है, राजीव भाई
0: जी,
4: हमारा उस्ताद चौधरी फरियाद.
0: हाँ, क्या कहने.
4: फिर सजाद पहलवान है, इकबाल भाई है, पापा शशि के, हमारा डॉक्टर मलिक साहब, मोहम्मद रफी साहब
0: जी,
4: और नवाब परवेज खान भाई.
0: बहुत

0: शुक्रिया।
1: और हमारी बहन समीना खान
0: वाजिबा क्या कहने,
1: आसिया जी, अतिका जी, सलीना जी, सेनी जी, देखा जी, हमीदा जी, सितारा जी, मिस्टर मिसेस पटेल, सबको हमारा बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
1: अच्छा चौधरी फरियाद भाई के मिसेज अभी ठीक है कि नहीं?
0: कोई पता नहीं, क्योंकि उन्होंने फिलहाल फोन नहीं किया है, अल्लाह खैर ही करेगा, और उनसे बात नहीं हुई है, तो वो जब आएंगे तो उनसे पूछेंगे।
1: वो ठीक ही होंगी, हम दुआ करते हैं।
0: हाँ, हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह, रंग लेके आएंगे जी।
1: तो ये मैंने कभी गाया नहीं यार, कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्या होता है।
0: नहीं नहीं, गो हेड गो हेड, क्यों नहीं, गो हेड।
1: तेरी आँख के आँसों पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आँसों पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरे गम में तुझको बहलाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आँसों पी जाऊं, काश जो मिल कर रोते कुछ दर

दाग जिगर के टोटे, फिर रंजन होता इतना।

हालात की उलझन सुलझाई, हालात की उलझन सुलझाई।

जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, क्या तेरी जुल्फ का लहरा

0: तेरी गुप बनी के सवाली मोहताज एक कली की एक रोज थी फूलों वाली वह जुल्फे परेशान काम वह जुल्फे परेशान मैं काम कैसी मेरी तकदीर कहाँ तेरी आँख के आँसू पी जाऊँ कैसी मेरी तकदीर कहाँ तेरे गम में तुझको बहलाऊँ तेरे गम में तुझको बहलाऊँ ऐसी मेरी तकदीर का तेरी आँख के आँसू पी जाऊँ।
1: वाह वाह वाह वाह, कमाल ही कर रहे। बड़े दिनों के बाद मैंने ये गाना सुना है और बड़ा ही प्यारा गीत, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गुनगुनाया तलत महमूद साहब की आवाज़ में, और बड़ा ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये गाना गुनगुनाया, और डॉक्टर मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, आपका भी शुक्रिया अदा किया, और अतिका साहब का शुक्रिया अदा किया, नदीम मंसूर का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया ये आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत गीत है, वंडरफुल गीत, वाजिबा क्या कहने। और वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और कौन सा गीत लेके आए हैं हमारी बाबी जान?
2: हेलो जी भैया।
1: हेलो जी बाबी जान, हाउ आर यू गुड? हाँ वाजिबा क्या कहने। और आज आप खुशी मना रहे हैं, और आज तो फुटबॉल भी है, रात को
2: अभी आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी खाया।
1: वाह जी वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने, और वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया जी। वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया, और जबरदस्त हो गया। एनर्जी आनी चाहिए, क्या कहने। बहुत अच्छा लगा कि आप आए और बहार आ गए जी, और हमारा साथ दे रहे हैं। आपके फेवरेट हैं वो शहीद साहब हैं जो लंदन से फोन करते हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं।
2: हाँ, इसका गाना बहुत अच्छा लगता
1: है। सईद एहसान जी, वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, माशाल्लाह।
2: हमारा बल्ली वाला भैया सचिन भैया की बात बहुत अच्छी लगती है
1: जी। जी बड़ी प्यारी बात करते हैं, वाकई उसमें कोई शक नहीं है, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं।
2: इसके बाद में एक-एक शब्द समझने की बात है।
1: हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ है आपका, भी प्यारा अंदाज़ है। आपके जो गाने होते हैं बड़े ही खूबसूरत गाने होते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है, जो सुनने वाले हैं वो भी पसंद करते हैं आपकी आवाज़ को, और पसंद करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आती हैं माशाल्लाह, और प्रोग्राम में शिरकत करती हैं, और गाना भी गुनगुनाती हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जी, और बाबी जान मैं आपको एक मैं आपके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यहां पे थोड़ी देर के बाद यहां पे मैंने अजान पेश करनी है, तो आपने प्लीज़ थोड़ा होल्ड करेंगे। आए देखो ये होती है खूबसूरती, देखो ये मुझे अच्छा लगता है जब मैं कहता हूं माशाल्लाह क्या कहने, वाह वाह वाह, देखो ये होती है खूबसूरती होती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह समझे हमें, और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे, उसके बाद अजान ब्रेक करेंगे, वो भी बहुत खूबसूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबी जान, ये दोबारा आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ, दैट इज व्हाट यू कॉल अ फैमिली। जब मैं कहता हूँ ना फैमिली है, ये मेरे अपने हैं, और वही बात, और ये मेरे अपने हैं, और माशाल्लाह ये समझते हैं मुझे, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने छोटी सी ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के फौरन बाद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और वो भी हमारे लिए और सबके लिए, जो मुस्लिमीन मुस्लिम उम्मा हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि अजान पेश करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक।
3: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: We've got a time in the studio, it's 43 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Pavis Khan. Sunrise
3: Music. Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट वेलकम बैक लिसनिंग और लिसनर रेडियो 103.2 एफएम और यहां पे हमारा साथ देने हमारे पापी जान हैं सुमित्रा जी हैं ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन किंग से हैं वेलकम जी आनो खुश आमदीद कहूँगी यहां पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी पापी जान ऑल योर्स
1: थैंक यू वेरी मच
0: और गुरुजी ने आज बहुत ही खूबसूरत गीत गुनगुनाया वेरी नाइस ब्यूटीफुल और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी
1: पहली बार
0: बड़ा ही खूबसूरत गीत वो वेरी नाइस समथिंग डिफरेंट है बहुत ही कमाल का गीत हमने गुनगुनाया वेरी नाइस
1: थैंक यू भैया
0: जी
1: मैं सबको सलाम बोलती
0: हूं जी जी जी गो अहेड गो अहेड
1: बल्ली भैया शकील भैया है
0: जी
1: जावेद भाई है मोहम्मद हनीफ भैया है
0: जी
1: वालेकुम
0: अस्सलाम प्रोग्राम सुन रहे जी
1: इसको स्पेशल सलाम
0: जी जी
1: फिर वाजिद भैया है चौधरी फरियाद भैया
0: जी
1: इसके वाइस ठीक हो गए
0: जी
1: इसकी आवाज नहीं सुन
0: क्या फरमाया आपने
1: फरियाद चौधरी साहब
0: हाँ फिलहाल वो उन्होंने फोन नहीं किया है और वो फोन करेंगे जब उनको मौका मिलेगा तो मुझे नहीं पता कि वो उनकी मिसेज कैसी हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मिसेज हॉस्पिटल में हैं तो हम उनके लिए दुआएं की हैं और अभी भी दुआएं कर रहे हैं तो जब वो आएंगे हमें बताएंगे वो क्या सूरत हाल है जी आमीन आमीन आमीन आमीन फोन किया आपने वो प्रोग्राम सुनता है ना आपको पिछले हफ्ते प्रोग्राम सुन रहे थे माशाल्लाह नहीं नहीं वो प्रोग्राम सुनता है वो आज भी उन्हें प्रोग्राम सुन रहे हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा वो कहता है मैं चोरी चोरी छुपके छुपके सुनता हूँ
1: शादी की बात
0: बिजी हो गया अभी भी वो प्रोग्राम सुन रहे हैं माशाल्लाह वो प्रोग्राम सुन रहे हैं
1: चलो
0: जी
1: पापा
0: जी जी
1: मोहम्मद रफी भैया है सबको मेरा बहुत
0: दिन
1: को
0: जी
1: हमारे सखी के लिए मैं आशिया जी है अतिका जी है अतिका जी ने बहुत अच्छा गाना
0: बहुत खूबसूरत गाना गाया जी वाकई
1: सलीना है सिकमी जी है रेखा जी हमीरा जी सितारा जी मिस्टर मिस्टर पटेल
0: जी
1: आपको मेरी कौन आपको स्पेशल सलाम भैया
0: जी
1: रफी साहब का गाना है
0: जी जी गो अहेड गो अहेड जी जी
1: खुया खुया क्या आसमान आँखों में सारी रात जाएगी हमको भी कैसे नींद आएगी हो वो खुया खुया क्या मस्ती भरी हवा चल चली
0: सारी
1: हमको भी कैसे
0: वाह वाह क्या कहने वाह क्या कहने
1: हमको भी कैसे
0: वाह क्या कहने क्या कहने
1: चुप रहे कोई जरा हो गए कैसी ना जब खोया खोया चार खुला आसमां
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत, वाह जी वाह।
1: देखो ना परवेश भाई,
0: जी जी जी, खोया खोया चांद, हाँ जी जी,
1: कैसे नींद आएगी उसको, लोरी सुनाएंगे
0: तो आज नींद नहीं आएगी, आज फुटबॉल का मैच, आज नींद नहीं आएगी, आज फुटबॉल है, आज सोना नहीं है, ठीक है ना, और आज नहीं सोना है, आज ना वो फुटबॉल देखना है, ठीक है, हम भी देखेंगे, आपने भी देखना है,
1: मैं जागूंगी, मेरे को फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ हम सब जागेंगे, आज हमारे पार्टी पार्टी हो रही है, आज तो पार्टी होगी, क्योंकि
1: वो तो सुबह सो जाएगा, लेकिन मेरे को तो घर
0: का खोया खोया चांद, ये वाह जी वाह, क्या कहने क्या, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया
1: जी, सबको जितने लोग सुन रहे
0: जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और ये मूवी थी काला बाजार, और क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: मोहम्मद रफी भैया की वेट करते हैं।
0: हाँ मोहम्मद रफी साहब, वो आज उनके थोड़ा सा मसला हो गया, वो आज नहीं आएंगे, वो उन्होंने मुझे फोन किया तो वो आज गैर हाजिर होंगे,
1: इसको भी बात सुनेंगे,
0: ये हमारे शहीद एहसान साहब हैं, माशाल्लाह वो हमारा साथ दे रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वो आएंगे, तो वो आपके पता है उनके गाने बहुत खूबसूरत गीत होते हैं, वेरी वेरी नाइस,
1: आवाज बहुत अच्छी है,
0: बड़ी प्यारी आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है, बहुत खूबसूरत आवाज है,
1: सब सब लोग
0: एक से बढ़कर एक, किसकी तारीफ करें बाबी जाना, किस किसकी यहाँ पे तारीफ करें, एक से बढ़कर एक कॉलर है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत कॉलर है,
1: इसलिए तो अच्छा लगता है,
0: माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया बाबी जान, थैंक यू वेरी मच, यू मेड माई इवनिंग, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और आपने प्रार्थना करनी है, दुआएं करनी है कि आज इंग्लैंड विन हो जाए, ये जो हमारा जो मैच है ना, ये हमारे लिए बहुत ही हार्ड मैच है, वेरी हार्ड फॉर अस,
1: बेचारा वो लोग बहुत मेहनत
0: करते हैं, वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो हम दुआ करते हैं कि आज विन हो जाएं,
1: बेचारा वो लोग बहुत मेहनत करते हैं,
0: हाँ ऐसे ही ऐसे ही,
1: सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, किसी के ऐसा नहीं
0: कि
1: इसको नहीं लेकिन हमारे
0: इंग्लैंड
1: के लिए कि हमको
0: इंग्लैंड की हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम उनके सपोर्टर हैं ना, हमको सपोर्ट करनी चाहिए ना, क्या हाल है, हम उनके लिए सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और आपने भी सपोर्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं, और काश यहाँ पे कुछ सिस्टम होता तो हम भी लाइव यहाँ पे आपको सुनाते, यहाँ पे पोर्ट यहाँ पे वो लेट हो रहा
1: है,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो जो जो आज रात को विन हो जाए ना, तो फिर जो आने वाला प्रोग्राम होगा ना, तो उसमें हम हंगामा करेंगे, पार्टी करेंगे, ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: आज भी पार्टी बहुत,
0: आज आज ही पार्टी होगी, हम दुआ करते हैं कि आज विन हो जाए, पहला गोल कर लें, और
1: जाने वाला है वो लोग तो आज बहुत
0: मजे
1: करेंगे,
0: हाँ मजे करें, आज रात को मजे करेंगे माशाल्लाह,
1: आज भी हो
0: जाएगा, हाँ अच्छा हो जाएगा, पार्टी हो गई, हमारे हमें हमें चाहिए पार्टी के बहाना चाहिए, ठीक है ना बाबी जान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत, वाह दैट वॉज हमारे मेहमान हैं, और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमारा साथ दे रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, आपका भी, आप शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं, यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, और उनके साथ थोड़ी देर के बाद हम मुलाकात करेंगे, यहाँ पर वो शहीद एहसान साहब हैं, और क्योंकि अभी न्यूज़ ब्रेक भी आने वाली थोड़ी देर के बाद है, तो हम उनको सलाम पेश करेंगे, उनको वेलकम कहेंगे, जियाएँ कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, मिला कहेंगे उनको, और उनका गाना जो हम नेक्स्ट आवर में गाना सुनेंगे, क्योंकि उनकी जो आवाज है महमूद रफी जैसी आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम, कैसे
0: हैं? मैं तो ठीक था, फर्स्ट क्लास हूँ, A1 हूँ, और आपके लिए आपको हम दुआएं करते हैं, आपके लिए हमारे सुनने वाले हमेशा आपके लिए दुआएं करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो आवाज है ये महमूद रफी साहब की आवाज है, क्या कहने, वाह जी वाह, आप छा गए मेरे भाई, आप छा गए दुनिया में, छा गए, क्या कहने क्या कहने,
2: आपका प्यार है
0: जी,
2: आपको अच्छा लगता है कि मुझे चांस मिलता है आपके रेडियो के ऊपर आके कुछ कुछ सुना दे, यू नो,
0: No, no, very, very good. Or I know you today you'll be waiting tonight for the football match as well tonight. And वैसे भी आप बाना ढूंढते रहते हैं कि कुछ फुटबॉल आएगा, कोई पार्टी होगी, कि आपके घर में तो हमेशा ही माशाल्लाह पार्टी पार्टी होती है हर रोज। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगेगा, माशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आप ही दुआएं करें कि वो आज विन हो जाएं, तो हम उनके दुआ गो हैं जी,
2: कल मंडे है, so that we can go to work tomorrow.
0: Mera khayal mein kal mushkil hi hoga ki kal jaldi to log jo hai na wo sticky karenge kahenge yaar bimar ho gaya hu ye ho gaya wo ho gaya ki raat ko jagna hoga. To aap to theek hai na kyunki aapko jo self employed hai mashallah aap to aapko jo mere khayal chutti mil jayegi. आपको तो छुट्टी मिल जाएगी ना, ये तो मसला हल हो जाएगा माशाल्लाह. तो बहुत अच्छा लगा कि आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो नेक्स्ट आवर में मैं स्ट्रेट वे आपको लेके जाऊंगा, ठीक है ना. तो आपने थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं आपको ले जाऊंगा अभी गाना सुनाने के लिए, फिर अभी वो टाइम हो जाएगा न्यूज ब्रेक का, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना. आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट. तो आप थोड़ा सा होल्ड कर लें तो फिर मैं आराम से आपने गाना सुनाना है, आराम से प्यार मोहब्बत के साथ, ठीक है ना. बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने होल्ड करना है, वहां पर खामोशी होगी, ठीक है वहां पर. तो आपने थोड़ा होल्ड कर लें, ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. और ये होते हैं, ये मेरे, जब मैं कहता हूँ ना मेरी फैमिली, ये मेरे अपने हैं, मेरे सज्जन हैं, ये मेरे लिए आ रहे हैं माशाल्लाह, और मेरे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं माशाल्लाह, सपोर्ट करते हैं और जरा अफजाई करते हैं. देखो मिल्टन किंग्स से, लंदन से माशाल्लाह, ब्रैडफोर्ड से, यॉर्कशायर से माशाल्लाह, सराउंडिंग एरिया से, शेफील्ड से, स्कॉटलैंड से माशाल्लाह आ रहे हैं, मैनचेस्टर से आ रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा. पाकिस्तान से फ़ोन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. और यहाँ पे हमने क्या करना है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे न्यूज़ ब्रेक होगी, और न्यूज़ ब्रेक के बाद यहाँ पे, क्योंकि मैं फ़िलहाल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है हमारा वो मैं हम सुनाने के लिए कोशिश करता हूँ. और यस, आई यू स्ट्रीमिंग ऑन टिक टॉक लाइव और थिंकिंग अबाउट गेटिंग स्टार्टेड, जॉइन द सन रेडियो क्रिएटिव नेटवर्क ऑन यू के टिक टॉक लाइव एजेंसी हेल्पिंग द क्रिएटिव ग्रो द ऑडियंस डेवलपमेंट द ब्रांड एंड गेट द प्रमोटेड ऑन सन रेडियो. टू फाइंड आउट मोर एंड अप्लाई विजिट द सनराइज क्रिएटिव नेटवर्क पेज at www.sunrise.radio, that is www.sunrise.radio. और वाजी वक्त ये भी काम हो गया जी, वाजी वक्त क्या कहने, क्या कहने जी. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, और अल्लाह हैरी करें. हम दुआ करते हैं सबके लिए, और हमारा साथ दे रहे हमारे मौजूद मेहमान भी हैं, एम खान जी वो हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी.
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
4: The Sky News Centre at 10. Thousands of England fans are in Mexico City for tonight's last 16 World Cup clash with the co-host nation. Bad weather's forecast at the Azteca Stadium, where their opponents have a formidable record. Altitude is also going to be a factor, but these fans are confident of a win.
5: No doubt about it. Not a doubt in my mind. Can't wait.
6: I saw the bus come in and I cried. I was crying. I feel more English than Mexican.
7: It's going to be hard, but I think we just got to try and keep a clean sheet for the first 20 minutes.
4: Meanwhile, FIFA have made a huge decision to suspend USA's Foller and Balogun's one-game ban, which will allow him to face Belgium in the last 16 of the World Cup. The Belgian FA have reacted angrily to the news, while President Trump has welcomed what he calls the reversal of a great injustice. Reform UK's Robert Jenrick says there's nothing wrong with Nigel Farage receiving gifts from a man convicted of fraud. According to the Sunday Times, George Cottrell gave the party's leader support and use of a rented property before he was elected. An 84-year-old retired priest has been arrested for expressing support for banned group Palestine Action. Sue Parfitt was part of a protest outside the headquarters of the Metropolitan Police, marking 1 year since the ban came into force. In sport, there have been differing fortunes for the men's and women's top-ranked tennis players at Wimbledon. Live now to Lewis Mason on centre court.
8: Just moments ago, defending champion Jannik Sinner booked his place in the quarterfinals, beating Japanese qualifier Shintaro Mochizuki in straight sets. Novak Djokovic is also into the last four after getting his 106th win at the All England Club, breaking Roger Federer's record. But women's top seed Aryna Sabalenka says she wants to forget about tennis after losing to Naomi Osaka.
4: Ferrari's Charles Leclerc won the British F1 Grand Prix at Silverstone with the safety car deployed on the last lap. George Russell was second for Mercedes. And that's the latest.

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम और यहां भी हमने करना है टाइम चेक.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, the time in the studio is 10:04 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. Aur yahan bhi hamare motor mein hai, hamare bhai hai, hamare dost hai, aur jitni inki main tareef karun kam hai. Bahut bahut shukriya inka bhi. Aur Sid Ehsan hai, aur kya kehne, inki jo khoobsurat awaaz hai, aur saab bhi aur hum bhi kehte hain Mamud Rafi saab, aur Mamud Rafi saab welcome. Ji ano khush amdeed, sad bismillah aapke liye. Ji
2: इतना दे दिया मुझे
0: कि नहीं नहीं आपको चाहने वाले हम साहब आपको मोहम्मद रफी कहते हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि प्यार मोहब्बत है, ये खलूस साहब के लिए माशाल्लाह मोहब्बत है.
2: बहुत शुक्रिया
0: आपने आप हमें सुनाए और कैसी तबीयत आपकी और कैसा वक्त गुजर रहा है आपका?
2: गुड परफॉर्मेंस, गुड, थैंक गुडनेस, एवरीबॉडी एंजॉयड एंड And that's the main thing. They enjoy.
0: That's the main thing as well. MashaAllah, बहुत अच्छा लगा. The feedback has been wonderful. MashaAllah, बड़ी खूबसूरत feedback आपकी मिली है और मुझे भी खुशी हुई है और बड़ा ही प्यार मोहब्बत, बड़ा ही खलूस मोहब्बत के साथ MashaAllah. और आज हमारे लिए क्या लेके आए?
2: मैं क्या मिठा गाना गाते हैं अपने गानों के लिए हमेशा, हम कोई ना कोई जीने के ऊपर चल रहे हैं.
0: जी जी,
2: इंसान We are always going out and about, you know, so this gana is very fitting.
0: Wah ji wah, kya kehne, kya kehne, wah.
2: Sabke liye,
0: ji, ji. Wah. Aha.

0: आवाज चले थे साथ मिल के।
1: वाह क्या कहने

0: again.
1: Hello.

0: वाह, क्या कहने क्या कहने, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मजा आ गई, मजा आ गया, क्या कहने, गाने में तो खो गया हूँ, वेरी नाइस। और एक एक और हो जाए कि आपके पास टाइम हो, क्योंकि आप जबरदस्त हो जाएगा, क्या कहने।
1: तो ये आपको किशोर कुमार का बनता है?
0: जी जी जी, गो हेड गो हेड गो हेड, जी जी, क्या कहने क्या कहने,
1: किशोर कुमार
0: ऑन द वोकल्स, वाह जी वाह, क्या कहने,
1: झूल यहाँ
0: बिखूरने
1: को, खेलते हैं झूल यहाँ, खेलते बिखरने को, खेलते हैं दिल
0: यहाँ,
1: मिलते बिछड़ने को, खेलते हैं झूल यहाँ। Kishore Kumar was a big singer.
0: He was big, no doubt. इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। Amazing singer, amazing, amazing.
1: कल रहे ना रहे, मौसम ये प्यार का है।

0: रोते हैं गुल यहाँ।
1: वाह क्या कहें। वाह
0: हो जी लो के हो टॉप मैं जो कराज है फूलों के सीने दो ठंडी ठंडी आज है जी लो के हो टॉप मैं जो कराज

0: चल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ।
1: वाह क्या कहने,
2: क्या बात है यार,
1: वाह क्या मजा आ गया जी, चश आ गई, वाह बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह ब्यूटीफुल, वाह वाह अमेजिंग अमेजिंग, दैट वाज अ ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत आपकी आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है।
0: वाह बात है, क्या है दिल सनम, क्या ये रात है।

0: मिल के भी छोड़ी न कॉफी है भूल यहाँ।
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहने क्या कहने, माइंड ब्लोइंग, दैट वाज अ ब्यूटीफुल गीत आपने सुना है और बहुत अच्छा लगा, और आपका शुक्रिया अदा कर, सब सुनने वाले आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हम ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका भी। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया, वैल्यूबल टाइम दिया, कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए, अगले प्रोग्राम में हम दोबारा हम कलाम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी, रब रखा, हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। वाओ, That was a beautiful gentleman और सईद एहसान साहब ने कमाल कर दिए, बहुत खूबसूरत है इनकी आवाज़, बड़ी प्यारी आवाज़ है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी जो आप आएँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हैं और भाई हैं, दोस्त हैं, जितनी इनकी मैं तारीफ़ करूँ कम है, और हमारे मोहतरम मौजूद मेहमान हैं, हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह, और एम खान जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम से आपको, आपके सुनने वाले जितने शायर व शायर
1: माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: जिनकी गहराई से सलाम दुआ की दरख्वास्त, मैं भी दुआ करूंगा, फरमाए
1: आमीन आमीन माशाल्लाह।
2: आपने वो लोहार आलम लोहार ने एक शेर पढ़ा था,
1: जी जी,
2: मुझे वो बड़ा पसंद था।
1: अच्छा,
2: एक ही टुकड़ा पढ़ूंगा, और पढ़ूंगा,
1: जी जी जी जी।
2: आदम लोहार कहते थे, ढा दे मस्जिद,
1: ढा दे
2: मंदिर, ढा दे जो कोई टंडा बंदिया के सीधा
1: दिल ना टाई।
2: मैंने पिछले हफ्ते
1: कोई बात नहीं,
2: हकीकत है, इतना अच्छा कलाम पढ़ने वाले वो मेरी जुबान से कोई ऐसी, सबसे आपसे सुनने वालों से माफी चाहता।
1: कोई बात नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, कोई ऐसे कोई बात नहीं है, आप प्रोग्राम में शिरकत करते हैं माशाल्लाह, आपको पसंद करते हैं हम साहब, आपकी जो शायरी है बड़ी कमाल की करते हैं जी,
2: ये आपका बड़ा पन है
1: जी जी,
2: कमजोर लोगों को साथ निकालते हैं
1: जी जी,
2: ये क़यामत वाले दिन लोगों के दिल दिखाने वाले, उनको उनकी पिटाई होगी, इसलिए मैंने हो नहीं समझा, आज ही इसी वक्त मुनासिब है माफी मांगना।
1: नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई आपने कुछ सुनाना है, लामा इकबाल साहब का कोई शायर सुनाना है तो सुना दें, कोई मसला नहीं जी,
2: इकबाल का शेर उमिया साहब के कुछ,
1: जी जी जी जी माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह।
2: आज के जो जमाने के हालात है उनके बारे में
1: जी जी,
2: पेशवा जो हमारे बारे में लामा इकबाल इरशाद पाते हैं
1: जी जी,
2: उम्मीद क्या है सियासत के,
1: वाह
2: उम्मीद क्या है सियासत के पेशवाओं से, ये खाक पास हैं रखते हैं खाक से पैमान, हमेशा मोरो मकस पर रख, हमेशा मोरो मकस पर निगाह है इनकी,
1: वाह वाह वाह क्या कहने,
2: कहाँ है सिफते अनकूत इनकी कमंद,
1: वाह जी वाह बहुत खूब,
2: कुशाबा काफिला जिसके अमीर की है मुता, तखयले मलकूती ओ जज्बाए हाय हाय बुलंद। आगे मियां साहब ने
1: जी जी
2: के मुताबिक की, मैं उनका भी शेर जमाने के मुताबिक क्या क्या हो रहा मियां साहब
1: जी जी,
2: तैर शिकार उते बंद कैदां नाले तो लड़ाई, सोग व्या मोहम्मद बख्शा हर गिस विच आई,
1: हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने,
2: रुस्तम बस्ती हाल शिकस्ती दहशत भाज दिलेरी,
1: हाँ हाँ क्या कहने,
2: खौफ उम्मीद मोहम्मद बख्शा इस विच गनी गनेरी,
1: हाँ हाँ हाँ
2: बात मजाजी रमज हकानी, वन वना दी काठी सफर इश्क किताब बनाई, सब छपी विच लाठी, जिन्ना तलब किसे दी होसी सुन किसा खुश हो सन,
1: वाह जी वाह,
2: जिन्ना जाग इश्क दी सीने जाग सवेरे रोशन,
1: वाह वाह
2: शायर दी आजमाइश आई इस किस्से विच आई हर रंगू कुछ सुकून सुनावे
1: वाह वाह वाह वाह क्या कहने
2: उसकी दनाई
1: वाह वाह वाह
2: इमाम राजी कहते हैं
1: जी जी अर्शद
2: शख्स ने अपने जिंदगी में लोगों की सुलह कराई
1: जी
2: और किसी का दिल ना दुखाया
1: वाह जी वाह क्या कहने
2: वो कयामत वाले दिन साया एक कर्म है उस शख्स को आजाद को अल्लाह अपने फजल के कर्म से
1: آمین آمین خم آمین بہت بہت شکریہ خیر بہت بہت شکریہ اور یہ تھے ہمارے معزز مہمان ہمارے ایم خان جی بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ پروگرام میں شکر کرتے ہیں اور بڑا ہی اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ ان کے پاس جو علم ہے نالج ہے اور ہم بھی ماشاءاللہ ہمیشہ ہی ان سے ماشاءاللہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور یہاں بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے محترم ہیں ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں جتنی کی میں تعریف کروں کم ہے ایوب جوان صاحب ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ویلکم کہیں گے جی ہیں کہیں گے خوش آمدید کہیں گے سب بسم اللہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضور
3: وعلیکم السلام پرویز خان آپ کیسے ہیں
1: الحمدللہ رب العالمین میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کو ہم نے آواز دی ہے پچھلے پروگرام میں ماشاءاللہ تو آپ آ گئے ہیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھو آپ کے چاہنے والے آپ کو یاد کرتے ہیں عذر افزائی کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے ماشاءاللہ کیا بات ہے
3: بس لوگوں کی مہربانی ہے کیونکہ ہم بہت ہی زبان کے میٹھے
1: ہونا چاہیے دیکھو نا ایم خان صاحب نے کیا کہا ماشاءاللہ دل کسی کے نہیں دکھانا چاہیے
3: ہاں ہم کسی کو دل نہیں
1: دکھاتے یہ اور بات ہے کہ لوگ ہمارا دل نہیں نہیں ان کو کرنے دو جو بھی کرتے ہیں کوئی بات نہیں
3: ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے ہمیں پتھر بھی مارتے رہتے ہیں لوگ تو ہم گزر جاتے ہیں
1: ہاں کوئی بات نہیں یہ یہ ہوتی ہے خوبصورتی
3: لگا لیتے ہیں کیا کریں
1: کوئی بات نہیں کوئی یہ بھی اچھا پالا یہ بھی اچھے لوگوں کی نشانی ہے آپ اچھے ہیں تو ماشاء اللہ دیکھو کتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ماشاء اللہ
3: جی آپ کا شکریہ آپ کی محبت کا شکریہ
1: ہمیشہ ہم کرتے ہیں میرے بھائی آپ کے ساتھ
3: تو آج میں
1: جی جی
3: گزر رہا تھا یہاں سے تو آپ نے آواز دی تو میں نے سوچا چلو آپ سے آج بات کر لیتے ہیں
1: کہاں سے گزرے تھے برف سے گزرے تھے یا اولڈن سے یا مانچسٹر سے گزر رہے تھے
3: نہیں آپ کی گلی سے گزر رہے تھے
1: اچھا یہاں برف سے آپ کی ہماری گلی سے خوش نصیبی ویلکم
3: بس ایسے گزرتے رہتے ہیں جہاں پر درویش لوگ ہیں نا جہاں پر
1: درویش لوگوں کی یہی بات ہوتی ہے دیکھو یہ خوبصورتی ہوتی ہے دیکھو نا تو مجھے بتاتے نا تو میں یہاں پہ آپ کے لیے کوئی کیا کہتے ہیں مرغا مرغ مسلم کوئی چکن ٹکے کوئی مسالے چلا رہے کوئی کیا ہے تو وہ آپ کی خدمت داری کرتا آپ کی خدمت کرتا
3: نہیں وہ تو چودھری مظفر صاحب نے کر دی تھی
1: اچھا کر دیے تھے ماشاء اللہ کوئی بات نہیں انہوں نے کر دی تھی ہم نے کر دی ایک ہی بات ہے
3: بس ایک ہی بات
1: نہ وہ بھی بڑے پیارے بھائی ہیں انہوں نے کر دیے ہم نے کر دیے تو یہ تو خوبصورتی ہے نا ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی دیکھو یہ دیکھو کتنے اچھے ہمارے برافر کے ہمارے بھائی ہیں دیکھو
3: ہاں آپ کے بریٹفورڈ کے لوگ بہت اچھے ہیں کیونکہ میں بھی تو بریٹفورڈ کسی زمانے میں رہا
1: ہوں ہاں وہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے ہاں بریٹفورڈ میں رہ چکے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا لگا تو انہوں نے خدمت داری کر دی انہوں نے کیے یا ہم نے کیے ایک ہی بات ہوگی ایک ہی اچھا لگا
3: ایک ہی بات ہوگی تو کچھ اشعار سنا دیتے ہیں
1: جی جی جی ارشاد
3: ہنستے ہوئے لوگوں کو رلایا نہیں کرتے
1: واہ واہ واہ واہ کیا کہنے
3: ہم اپنا کوئی زخم دکھایا نہیں
1: کرتے واہ واہ کیا کہنے
3: ایک بار جسے اپنی نگاہوں سے گرا دیں
1: واہ
3: پھر اس کو کبھی دل میں بسایا
1: نہیں کرتے واہ واہ واہ واہ واہ کیا کہنے
3: اس شخص سے مل کر مجھے احساس ہوا ہے
1: واہ واہ
3: جو پیڑ بڑے ہوتے ہیں سایہ نہیں کرتے
1: ہائے ہائے ہائے مکر جی دوبارہ کریں اس کو واہ واہ واہ واہ کیا کہیں
3: اس شخص سے مل کر مجھے احساس ہوا ہے
1: واہ
3: جو پیڑ بڑے ہوتے ہیں سایہ نہیں کرتے
1: واہ واہ
3: رکھتے ہیں انہیں ہم صدا سینے سے لگا کر
1: واہ
3: دکھ اپنا کسی کو بھی سنایا
1: نہیں کرتے واہ واہ واہ واہ
3: یہ کھیل محبت کا ہے پھر سوچ لو ارشد کو دیتے ہیں سب کچھ یہاں پایا نہیں کرتے
1: خائی خائی خائی خائی خائی کیا کہنے
3: ایک اور ہے
1: جی جی ارشاد
3: جذبوں کی میٹھی نیند سلا تو نہیں دیا
1: واہ
3: फिर अपने आप हमने बुला तो नहीं दिया।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने,
3: जिंदा हो तुम भी तुर्के तलक के बावजूद हमने भी अपना आप जला तो नहीं दिया।
1: हाय हाय हाय हाय
3: वो लौट कर जब आया तो कहने लगा हमें आंखों में और ख्वाब सजा तो नहीं दिया।
1: वाह जी वाह क्या कहने,
3: कुछ मंजिलें हैं और भी राह हयात में।
1: वाह जी वाह क्या कहने,
3: जीवन इस गली में लौटा तो नहीं दिया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
3: अरशद मुझे मुझे नजर आते हो आजकल रोशन दिया वफा का बुझा तो नहीं दिया।
1: हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
3: तो ये तो शायरी थी तो
1: जी जी
3: सुना देते।
1: गाना सुना रहे
3: नहीं, गाना तो हमने सुना सकते थे लेकिन गाना आजकल मेरे सुर लूज हो गई है ना।
1: कोई बात नहीं आप सुना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और सब जो ना वो जी जी
3: आपको एक छोटा सा लतीफा सुना।
1: अच्छा लतीफा सुना रहे हैं, अच्छा ठीक है जी जी।
3: बाप बेटे से तुम ईद के अलावा किस दिन ज्यादा खुश
1: होते हो? जी जी
3: बेटा जिस दिन मास्टर साहब बीमार होते
1: बीमार होते <हैं। laughs> ना जाना पे ना आना पड़े। क्या हाल है वाजी वाह क्या कहने क्या कहने वाजी वाह क्या कहने बहुत खूब वाह। एक और था जी इसको ढूंढे।
3: ये कुछ फरमा रहे हैं कि अर्शद साहब मेरी बीवी तो जन्नत की हूर है।
1: आहा वाह वाह
3: असलम अफसोस मेरी बीवी अभी जिंदा है।
1: अभी जिंदा वाह वाह क्या कहने क्या कहने बहुत खूब वाह वाह। शरारती हो गए वाजी बहुत खूब।
3: मैं शरारती नहीं हूँ, मैं
1: मशरूम सा निकल जा
3: मुन्ना सा
1: बच्चा सा नन्ना सा बच्चा जा। वो मुझे फिल्म याद आ गई, वो गोविंदा की शक्ति कपूर की मूवी है।
3: गोविंदा की नहीं है वो
1: शक्ति कपूर, उसमें गोविंदा भी है ना, उसमें गोविंदा भी है।
3: गोविंदा भी होगा लेकिन
1: शक्ति वो नन्ना सा मुन्ना सा वो करता है। बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह
3: क्या चौधरी फरियाद साहब को, चौधरी मुजफ्फर साहब को
1: जी,
3: एम खान साहब और भी जितनी सनराज की
1: फैमिली
3: है
1: जी जी,
3: शहजाद साहब को
1: जी,
3: और सबको हमारी तरफ एक इमरान नहीं इमरान ही नानक नहीं कमरान साहब को सबको मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत
3: शुक्रिया।
1: खुदा हाफिज़। वाह ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। शकील साहब वेलकम जी, ने खुश आमदीद आपको भी कहेंगे और सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, आपका भी इंतज़ार है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब आपका इंतज़ार है, एफ रहमान साहब आपका भी इंतज़ार है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम भाई दोस्त हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि आप आएँ, और बहुत ही अच्छा लगा। ये हैं हमारे मौजूद मेहमान हमारे दिल जानी और चौधरी फरियाद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओ बिस्मिल्लाह चौधरी साहब बिस्मिल्लाह, क्या हाल चाल, ठीक ठाक ठीक है? अल्लाह पाक का शुक्र है तुसाने साडे जड़े जो नेबर है ना लीज तू तुआ के याद करने ने सलाम दुआ करने ने ते बड़ा ही हौसला अफजाई करने उन्हें सुनया पता लगे पिछले प्रोग्राम में मैं किया ऐलान कि साड़ी भाभी जान ने हॉस्पिटल च बीमार हैं तो उन्होंने आपके लिए दुआएं की हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे वो हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद नीफ साहब हैं लीज में, वो हमारे लीज में हमारे नेबर्स हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने बड़ा ही खलूस मोहब्बत के साथ आपको याद किया। कोई बात नहीं
3: बहुत बहुत शुक्रिया
1: और मुझे ये बताएं कि भाभी जी की कैसी तबीयत उनकी? अच्छा कि काफ़ी दोस्ती ने मुझसे पूछा है और वाकई दोस्त में पूछा है तो वो सुन रहे हैं प्रोग्राम माशाल्लाह, तो उनको ये आगाह हो गया है कि वो फिलहाल हॉस्पिटल में, तो आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए खुशन दुआ करें और जो हॉस्पिटल में। जी
4: शुक्रिया
1: जी।
4: और मोहतरम आमर भाई ने, महबूब राय साहब ने, मुजफ्फर साहब ने
1: जी,
4: अजीत सलीम साहब ने, चौधरी मेर से चक्की आले ने, शकील साहब ने, हीरा साहब ने
1: जी,
4: और भाई अयूब वाजिद भाई ने, अयूब चौहान साहब, जावेद मीर भाई
1: जी,
4: अब्दुल क्यूम भाई ने, और नवीद राणा साहब ने, तारक कुमार साहब ने, चौधरी मुजफ्फर साहब ने, रियासत साहब ने, और डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने, चौधरी रुस्तान साहब ने, एम खान साहब ने
1: जी,
4: नदीम मंसूर साहब ने, राजा मुख्तार साहब, राजा मुस्तमैन साहब, और मेरा अपराध चौधरी मनीर, और मुजफ्फर अली हीरो साहब
1: जी,
4: और महमूद साहब, राजा शोहेब साहब
1: जी,
4: और राहिश भाई, और जितने भी महफिल मेहमान हैं
1: और माशाल्लाह हमारे गिदन भाई ने, हमारे पापी जान ने, उन्होंने सलाम पेश किया, नदीम मंसूर साहब ने, अतीका साहब हैं, उन्होंने आपको सलाम पेश किया जी। और स्पेशली सलाम पेश करने साडे मौजूद मेहमान ने, अहम खान जी ने, हमेशा दुआ करने दिखाते जी।
4: मेरी जान अजाबा तो छुटनी है, मेरी जान अजाबा तो छुटनी है, मेरे आका दी जे मेहरबानी होवे,
1: विक्रम
4: साज हो दिया विच कदमा कलमा लबा उते बादल दुरानी होवे।
1: वाह जी वाह, क्या कहने।
4: बिस्मिल्लाह करा फिर मैंने के मेरे सीने विच मेरे रब सोने, मेरे सीने विच मेरे रब सोने, करबला वखाई ते हाय निकली।
1: वाह जी वाह,
4: सबसे बाल से जल्द ख्याम वेखे, सबसे बाल से जल्द ख्याम वेखे। अब परवे समझ लगी है
1: जी जी, क्या कहने, बहुत खूब।
4: इन्हें सबसे बाल यानी कि प्यारे बच्चे
1: जी, प्यारे जी जी जी,
4: तो जल्द ख्याम वेखे, जहां मैं नजर उठाई थे
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
4: चुन चुन टोके मासूमा दे करी गठियो,
1: हाय अल्लाह,
4: चाहिए कि हाय निकली,
1: हाय
4: वारिस जन्नत दे विच दरबार बादल,
1: हाय हाय
4: हाय, आए निकली।

0: और तुखल्दी सलाम पेश करने ने साडे मेहमान ने माशाल्लाह साडे बड़े प्यारे वीर ने शुएब भाई राजा शुएब भाई
1: जी
0: जी बिस्मिल्लाह उन्होंने बहुत बहुत सलाम आज
1: कर माफ या और सजा दे दे कर माफ या और सजा दे दे तेरे सामने फरियाद ये आखरी
0: है। वाह वाह वाह क्या कहने
1: तेरे पास ना लौट के आऊंगा मैं
0: तेरा
1: सितम सियाद ये आखरी है निकल जाए की जान अब अली हमजा और तेरी जरब जलाद ये आखरी
0: है। हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने
1: फिर छोड़ो जिद और गुस्सा करीब आके छोड़ो जिद और गुस्सा करीब आके सुनो गौर से बात ये आखिरी है जिस दर्द में है तूफान बरपा जारी अशक बरसात ये आखिरी है।
0: हाय हाय हाय क्या कहने
1: ये दो मुझे जो देते हैं दर्द बाकी ये दो मुझे जो देने हैं दर्द बाकी तेरी मेरी मुलाकात ये आखिरी है करने लगा अब कूच में अली हमजा तेरे शहर में रात ये
0: आखिरी है। हाय हाय हाय हाय हाय हाय
1: फिर आके जरे यार पे अदब के साथ जाना जरे यार पे अदब के साथ जाना कहना कासद ये पैगाम आखिरी है तेरी खबर न लेने अब आएगा कोई रोज दिल का सलाम
0: ये आखिरी है। हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने
1: इंतजार में हुए जो खुश कांसों जिसमें नम का जाम ये आखिरी है ये भी कहना के कहता था अली हमजा और मेरी जिंदगी की शाम
0: ये आखिरी है। हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने वाह क्या
1: फिर गुजर मुदत गई है तकदीर रात गल आगे थी कासद जी
0: जी जी कासद जी
1: गुजर मुदत गई है तकदीर रात तेरे किथे रह गया है कासदा माई दया लल्ला आके खबर सुना जल्दी और रहन वाले सजन दी जाई लिया।
0: हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने
1: वक्त नजा मुलाकात दी है हसरत ऐसा मारना जख्मा गहराई दिया ओवे वसल दे रकबा मौज माना पाता मार आज जल्दा जल्दा जुदाई दिया।
0: हाय हाय हाय क्या कहने क्या दिखा क्या कहने
1: वाह जा कासद अर्ज गुजार उसनो जा कासद अर्ज गुजार उसनो आगे मौत तेनो हाजिर होना पैसी तेरे बाज ने नियत सजाई जांदी बन के वारत सर तेनो खलोना पैसी।
0: हाय हाय हाय वाह वाह
1: तेरे बाज ने नियत सजाई जांदी बन के वारत सर तेनो खलोना पैसी लगा दाग जो इजर फराक वाला कफन दफन ते पहले उतोना पैसी।
0: हाय हाय हाय
1: दूर दूर दे लोग जमुर्दी होता दूर दूर दे लोग जमुर्दी होता ना मेरी लाश से तेने वाज रोना पे।
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहने
1: क्या क्या मनिया के मंजरा दूर का सद मनिया के मंजरा दूर का सद पर ला जरूर पर तेने वाज जाना पैसे अचन के छोरे विच मौत आ गई ये महबूब तक जिक्र पहचाना पैसे।
0: वाह चोरी का वाह
1: रुठी हुई थी मेहनत हजार करके आसान सर मेरे चढ़ाना पैसी आखिर सख्त लचार मुर्दे होया ही जान निकलती नहीं तेन आज आना पैसी।
0: वाह चौधरी साहब
1: आखिरी गल
0: जी जी
1: असना के जा कासद महबूब नु साफ कह दे।
0: हाय हाय हाय
1: जा कासद महबूब नु साफ कह दे वल्ला मेरा पैगाम है आखिरी आ कलम लिख करतास उत्ते मेरा खत तेरे नाम है आखरी आ सुबह कल दी ओसी नसीब
0: किसनो
1: कल दी ओसी नसीब किसनो गुजर रहा जा मैं आखरी आ किधर का मैं इजराना गिर कीती मेरी सुबह से मेरी शाम है
0: आखिरी है। हाय हाय हाय हाय क्या कहने चौधरी साहब मन गया वाह जी वाह
1: क्या फिर आखिरी शेर
0: जी जी
1: आखिरी शेर साहिब रहीम साहब ना
0: जी जी जी जी
1: मैंने के मेहरबानी ने एक बेवफा करया।
0: हाय हाय हाय हाय हाय
1: आखिया ओ कोई ना आए जिन्ना दा कासत दे दे रे
0: जी जी जी
1: लिखिया के मेहरबानी एक बेवफा करया
0: आहा
1: मेहरबानी एक बेवफा करया
0: वाह
1: बाद मरण दे आन दी लोड कोई नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह
1: मेहरबानी हुन इक बेवफा करया बाद मरण दे आन दी लोड
0: कोई नहीं
1: मेरी जिंदगी ते गुजरी है खारां दे विच।
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਖਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunna Radio 103.2 FM. बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जो मेरे बहन भाई साथी दोस्तों बाबा अजीज़ हैं. और आज हमारी खुश नसीबी है कि देखो ये कौन है हमारी महफिल में. आज कसम से आज प्रोग्राम जो है ना मुकम्मल हो चुका है और ये हमारे मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और हमेशा ही हम इनका इंतज़ार करते हैं और आज आ गए माशाल्लाह. आज हमारा जो प्रोग्राम ये माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है और क्योंकि ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई मीठा जी हैं और हमेशा इनके प्यार से हम कहते हैं मीठा जी. और आपको पता है ये कौन है? ये है हमारे चौधरी रुखसार अहमद साहब ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से. बड़ी अदब अदाब से बड़े प्यार के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी हजूर
2: मेरे प्यारे भाई चैंपियन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. या अली मदद.
1: या अली मदद. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. जी हजूर, बड़े दिनों के बाद मैंने एक जुमला सुना है और चैंपियन का बड़े दिनों के बाद मेरा दिल जो ना कहने के बाग बाग हो गया और सीने में ठंड पै गई है वैसे भी गर्मी के मौसम में.
2: सारा यकीन करें कि चैंपियन एक नाम नहीं, चैंपियन एक ब्रांड है.
1: एक ब्रांड है. वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने. सुन लो जी सुन लो, क्या कहने. वाह जी वाह. और मैं सोच रहा कि इसको जो ना मैं ट्रेडमार्क कर दूं, इसको मैं सिग्नेचर कर दूं कि कोई और ना ले ले. क्या हाल है? कोई ले नहीं सकता ना, वो मेरा हो गया ना, तो इसलिए फिर क्या कहेंगे वो चोरी करेंगे. फिर क्या कहेंगे? क्या है
2: आप लिख रहे ना, चोरी करने वाला और कॉपी करने वाले के साथ सख्त कार्रवाई
1: की. वाह वाह, क्या कहने क्या कहने. कल वैसे भी मंडे है तो मैं इसको जो ना ट्रेडमार्क कर देता हूँ, रजिस्टर कर देता हूँ. मैंने कहा कि रजिस्टर हो जाए क्योंकि ये मेरे भाई ने दिया हुआ है तो ये मरने तक दम तक ये मेरे साथ रहेगा.
2: अल्लाह ताला आपको खिज़्रे उम्र अता फरमाए.
1: आमीन आमीन.
2: तो कहते हैं ना मरे आपके दुश्मन, ये भी नहीं दुआ करनी चाहिए दुश्मन
1: मरे. ना ये हम दुआ नहीं करते. ये हमारे मौला के मानने वाले, हम कभी भी दुआ नहीं करते. ये ऐसा कभी नहीं खोजते हैं. वो सोचने दो, हम नहीं कहते किसी को भी, हम नहीं कहते.
2: दुश्मन हमेशा परवेज भाई जिंदा रहे तो फिर ही मजा है ना.
1: कि मजा भी आता है जिंदगी जीने के, मजा आता है ना
2: जीने का. वो कहते हैं कि बंदा वही होता है जिसके कुछ दुश्मन होते हैं.
1: वो हमारे पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं कि दुश्मन उसके होते हैं कुछ, कुछ अंदर उसके आया कुछ कौन है ढूंढने का, कौन दुश्मन होना है. क्या
2: सर मेरा ख्याल है पहले तो मेरी मदद इतने तवील अरसे थे जो है ना वो आप महफिल में.
1: नहीं नहीं, वो बहुत जरूरी था मेरे भाई, वो बहुत जरूरी था हमारे लिए भी आपके लिए भी. और मुझे तो पता है कि आपने क्या किया उस दिन में, क्या क्या कैसे किया वो दिन गुजारे आपने. तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमें आज याद किया है और उस दिन जो आपने दुआएं की हैं हमारे लिए, हमने यहाँ पे यही कहा आमीन आमीन कहते रहे माशाल्लाह. जी
2: यकीन करें कि पूरे अय्याम में गम में अय्याम मुहर्रम जो है ना हमने अभी तक पूरे और 40वें तक जिनके नाम से क्योंकि अब टाइम ही बहुत थोड़ा है. अब मैं फर्दन फर्दन सभी को सलाम दूंगा तो वो भी टाइम चला जाएगा कि मेरे ख्याल अब अरफे आखिर में जो है दुआया कलमात मेरे
1: माशाल्लाह
2: इतनी प्यारी महफल हो चुकी है. अब इसमें मजीद कुछ करना जो है ना
1: आपने दुआ करनी हमारे लिए और खूबसूरत दुआ करें बिस्मिल्लाह करें. जी
2: जी मैं इंशाल्लाह जरूर दुआ करता हूँ और मैं इमाम
1: आपके
2: लिए और मैं दुआ करता हूँ या करीम अल्लाह या रहीम अल्लाह या फार अल्लाह या जलाले वाले कराम अल्लाह. ऐ आदम की तौबा मंजूर करने वाले अल्लाह, ऐ यकूब को यूसुफ से मिलाने वाले अल्लाह, ऐ यूनुस को मछली के पेट से निजात देने वाले अल्लाह, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग गुलजार करने वाले अल्लाह, ऐ हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शने वाले अल्लाह, तुम्हें अपने प्यारे हबीब हजरत
1: मोहम्मद
2: और उनकी पाक तहर और तैयब अहले बैत का सदका तमाम बीमारों को खसूसन चौधरी फरियाद साहब की अहलिया को आजला और जितनी हमारी माए जितनी हमारी बहने जितने हमारे बुजुर्ग जितने हमारे बच्चे बीमार या किसी भी परेशानी में है या अल्लाह तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की परेशानियों का
1: आमीन और वाजिद भाई के लिए करने दुआ प्लीज.
2: जी जरूर. और खसूसन खसूसन जनाब भाई वाजा साहब के लिए, वो भी अलील हैं, वो भी बीमार हैं, तुम्हें बीमार करबला का वास्ता, क्योंकि आज जो है ना 20 मुहर्रम है और आज जो है इमाम सज्जाद अलैहि सलाम को जहर दी गई है और तुम्हें बीमार करबला का वास्ता, इमाम सज्जाद अलैहि सलाम का वास्ता, तुम्हें जैनुल आबिदीन का वास्ता, सैयदों की जीनत है। वो कहते हैं कि नमाजी तो सब बोल सकते हैं कि सैयदुल साजिदीन सिर्फ इमाम सज्जाद अलैहि सलाम।
3: क्या कहने
2: तुम्हें, तुम्हें उस बीमार का वास्ता है जो 40 साल खून रोता रहा
3: है,
2: अपने बाबा काम में जो अपनी खुफियों को सरे और यान शान के बाजारों में देखता रहा है। दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह कोई भी भाई अपनी बहनों के साथ कोई बेटा अपनी माओ के साथ कैद ना हो और अपनी आंखों के सामने अपनी बहनों को माओ को तमाचे देखता हुआ ना देखे। बीमार का वास्ता जो
3: आमीन, आमीन,
2: आमीन। जो इंसान बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत कामला और
3: सेहत
2: का फरमाए। मेरा ख्याल है टाइम भी आखिरी मिनट रह गया,
3: आपको
2: नज़्म नहीं सुना सकता, ठीक है,
3: बहुत बहुत शुक्रिया और ये थे हमारे मोहतरम, बहुत शुक्रिया इनका और रुखसार भाई, और अल्लाह हाफिज अनशबहर।
0: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
4: From the Sky News Centre at 11. The storms predicted in Mexico City ahead of England's last 16 World Cup clash with Mexico have arrived and kickoff could be delayed. Joe Rawson is at the Azteca Stadium.
5: Storm protocols have been put in place here at the Azteca Stadium, which means all fans have had to take cover, and we have in the media as well. The forecast is for this type of weather to continue right up until kickoff, and these protocols will remain in place until there's been at least half an hour without a lightning strike. So the likelihood of a delay to kickoff is increasing.
4: Five-time winners Brazil have been knocked out with a 2-0 defeat to Norway. Meanwhile, FIFA have made a huge decision to suspend USA's Folarin Balogun's one-game ban, which will let him face Belgium in the last 16 of the World Cup. The Belgian FA aren't happy, but President Trump has called it the reversal of a great injustice. Reform UK's Nigel Farage claims he's the victim of an establishment hit job. It's after the Sunday Times reported George Cotterill, who's been convicted of fraud, gave the party's leader support and use of a rented property before he was elected. The bodies of two men who've been missing for more than a week have been found in a crashed car in Preston. Police say 31-year-old William Hutchinson and Stuart Tallis, who was 27, were discovered in a vehicle hidden from view in thick undergrowth off the A584. In sport, defending men's champion Jannik Sinner is into the quarterfinals at Wimbledon after a straight sets victory over Shintaro Mochizuki.
6: All things considered, you know, I tried to stay a bit more aggressive. Had some chances in the second set, couldn't use them, but still very happy about today's performance. Trying, you know, to step up, you know, every day a little bit better. So I'm very happy about today.
4: Seven-time champion Novak Djokovic is also through to the last eight after fighting past Roman Safulin. And George Russell finished second at the British F1 Grand Prix behind Charles Leclerc. And that's the latest.